टू अ कॉबलर कि यार इसकी जिप पे टूट गई है, ऐसा कुछ हो रहा था कुछ साल पहले की बात है ये, आई जस्ट सडनली रिमेम्बर आउट ऑफ नोवेयर, और हम जिप ठीक करा रहे थे और बिन मौसम की बरसात शुरू हो गई. सो आई वाज लाइक यार देखो कहीं अंदर जाना है, शेल्टर वेल्टर ढूंढते हैं, बिकॉज मोची के दुकान के ऊपर तो छोटा सा शेड टाइप था बस, एंड ही लुक्ड एट मी एज इफ उसे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एज इफ ये बारिश उसने मैनिफेस्ट की है. और सडनली उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो एक गाना गाने लग गया, एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक आई एम रियली लविंग दिस, बट क्या तू पागल है या फिर नशे करके आया है. एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रोशी तूने ही तो सिखाया है कि जिंदगी में जो भी मोमेंट हो उसे खुल के जीना चाहिए. भाई मैं तो ये रोज कहती हूँ, बट इस बंदे ने जैसे खुल के जिया ना ये मोमेंट.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjet bala burka. Mirchi, burka.
1: हेलो।
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना बतानी है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अगर तू है कौन, ये बता।
2: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर
1: ऐसा है इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपनी गर्लफ्रेंड को आपने इसलिए डम कर दिया दैट शी हैज़ बॉडी ओडर, लेकिन आपने रीज़न दिया कि आपके पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे थे कि आप एक लव मैरिज कर दो. ऐसी गंदी गंदी सीक्रेट से कि कहाँ जाओगे आप? हाँ,
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: जाता कहाँ है दीवाने. वट एवर द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग वॉज, इफ यू हैव अ कन्फेशन मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान, और मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
4: Hi Roshi,
2: कैसे हो आप?
4: First of all, I am a big fan of yours and it's great that I'm talking to you.
2: It's a pleasure.
4: मुझे बहुत खुशी हो रही है.
2: मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और स्पेशली ये पता करके कि मेरी तरह दुनिया में और भी खुराफाती लोग हैं. It makes me feel very normal. अच्छा, तो आपने क्या गंदे गंदे काम करे हैं जरा ये तो बताना.
4: हाँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं और किसी और से शेयर नहीं कर सकती, बट ओनली यू. तो मेरा बॉयफ्रेंड है, सो वी जस्ट स्टार्टेड डेटिंग और हम बस दो तीन डेट्स पर ही गए हैं. मुझे एक बात का बहुत डर था स्टार्टिंग से कि मैंने अपने बैक पे टैटू कराया है किरण नाम का, और किरण था मेरा एक्स. ठीक है, तो अब वो टैटू मेरे को हटाने का टाइम ही नहीं मिला, और मतलब मुझे हटाना ही था. सेक्सी टैटू है, इतनी सेक्सी जगह है मेरी बैक पे. बट देन आई स्टार्टेड डेटिंग दिस गाय, ही इज अ वेरी नाइस गाय. तो हम जैसे जैसे हमारी डेट्स आगे बढ़ी, तो यू नो वी स्टार्टेड गेटिंग इंटीमेट. तो ऑब्वियसली उसने देख लिया, और ओ गॉड, जब उसने वो टैटू देखा, वी वर इन द मिडल ऑफ समथिंग, यू नो, सो वो एकदम से रुक गया एंड ही सेड ये क्या है. और मेरी शक्ल देखने लायक थी, एंड आई वाज लाइक क्या बोलू क्या बोलू क्या बोलू. सो मैंने उसको बोला, किरण, मैंने तुम्हें किरण के बारे में नहीं बताया. किरण वाज माय बेस्ट फ्रेंड एंड शी डाइड इन अ एक्सीडेंट, और उसकी बहुत ट्रेजिक डेथ हुई थी. तो मुझे उसकी एक निशानी अपने पास रखनी थी, इसीलिए मैंने उसका टैटू कराया.
2: कितने बड़े झूठे हो
4: यार. वी वर इन अ मिडल ऑफ समथिंग एंड आई डिडंट वांट इट टू स्टॉप, तो मैंने बोल दिया जो मेरे दिमाग में आया. बट
2: एक सेकेंड बिफोर आई रोशिफाई यू, आई विल रोशिफाई यू, दिस विल स्टे बिटवीन यू एंड आई. जब आपने उसे ये बोला कि किरण मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एंड शी पास्ड अवे इन ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस, उसके बाद योर इंटीमेसी गॉट बेटर ना, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था.
4: यस डेफिनेटली इट वाज
2: कुछ कहने की

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची पर उसको साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.

0: मैं डेटिंग गेम में बहुत ही न्यू हूँ और द थिंग इज कि मैं अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर जा रहा हूँ एंड आई रियली वांट टू लुक लाइक अ स्टार्ट मफिन ऑब्वियो. लेकिन मेरा एक छोटा सा और शायद एम्बैरेसिंग सवाल ये है दैट मुझे नहीं पता है कि जब एक आदमी ड्रेस्ड होता है टू गो ऑन अ डेट तो क्या बेल्ट और जूते हमेशा मैच करने जरूरी होते हैं या वी कैन लाइक प्ले अराउंड विद डिफरेंट कलर्स ऑफ द बेल्ट एंड द शूज.
1: रोशी के डीएम से
0: ये मैसेज मुझे सुरेश ने लिखकर भेजा है एंड इट इज सो क्यूट सुरेश दैट आपने ये सवाल पूछा. इट इज नॉट एम्बैरेसिंग एट ऑल क्योंकि बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम डेट पर जा रहे हैं हमारे बेल्ट और शूज के बीच में कोई सिनर्जी होनी चाहिए या नहीं. बट नॉट अ लॉट ऑफ देम आर करेजियस इनफ टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड टू आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ डेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फैशन. आपके बेल्ट एंड जूतों का टोन मैच करना जरूरी है यानी कि कंप्लीटली आइडेंटिकल होने की जरूरत नहीं है कि दोनों चॉकलेट ब्राउन कलर के ही होने चाहिए. लेकिन अगर आपके जूते से डार्क ब्राउन है तो आपकी बेल्ट ब्राउन के किसी शेड कार्ड में ही होनी चाहिए. सो बेसिकली कलर एग्जैक्टली मैच होना जरूरी नहीं है लेकिन कलर टोन का मैच होना जरूरी है. एंड व्हाइल नाउ यू फिगर आउट योर बेल्ट एंड योर शूज आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डेट. और अगर आपकी भी जिंदगी में यू आर डूइंग समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम और आपको उसके बारे में बात करनी है हिट मी अप आई एम ऑल इयर्स और मेरे कान है नॉन जजमेंटल मेरी जान. फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी काम छे आपसे प्यार करना. सो व्हाइल यू डू व्हाट यू आर सो गुड एट डूइंग कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट.

0: only on Radio Mitchy New York.
1: New York. New York.
0: It's hot. It's hot.
2: Mitchy.
3: R-O-C-H-I-E.
4: Roshi, Roshi.
2: Mitchy Roshi.
0: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
5: You know the funny thing is, आपको अभी तक पता ही होगा कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अब मेरा बॉस है. Which in any case is very funny. आज मेरा मूड नहीं अच्छा था और वो ऐसे बैठ के अपना काम कर रहा था, टक टक टक. बहुत शरीफ आदमी तो नहीं कहूँगी मैं, बट है. और वो काम कर रहा था शराफत से. आई वेंट अप टू हिम एंड आई सेड, यार मुझे ना बहुत खराब लग रहा है, बहुत लोनली लग रहा है. बॉस क्या तुझे मेरी फीलिंग्स की कोई फीलिंग्स नहीं है? तो इसलिए क्या बात हो गई, क्या हो गया? ऐसे पता नहीं, बहुत लोनली लग रहा है, आप मुझे थोड़ा वक्त और थोड़ी फीलिंग्स दे सकते हैं? तो उसने कहा, मोहतरमा क्या हो गया आपको? टू विच आई सेड, देख आज थर्सडे नहीं है लेकिन कल थर्सडे है, कल जब मैं ऑफिस आऊँगी हम थोड़ा ऐसे फन कर लेंगे इकट्ठे, क्योंकि थ्रो बैक थर्सडे तो अलाउड होता है एक्सेस के बीच में. अगर आपको भी ऐसा ही लगता है, Why don't you hit me up on Insta या FB and we'll talk about it. कि कभी ऐसा हुआ है कि out of sheer loneliness, you're like कुछ और करने को नहीं है, OTT platform पे एक ढंग की पिक्चर नहीं है, अपने एक्स के साथ हुकअप कर लेते हैं. Find me and we'll talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. And while you do that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi.
1: R-O-C-H-I-E.
2: Roshi, Roshi.
0: Mirchi, Roshi.
3: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
4: अगर अपने रिलेशनशिप को 100% सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, देर इज ओनली बट वन की टू इट, और वो ये है कि आप दोनों अगर अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, रोमांस का चांस ही नहीं है ब्रो. और अगर ऐसा ही हो रहा है आपकी जिंदगी में, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अभी मीशा है. हाय बेब.
5: हाय रोशी.
4: मैम बोलने वाले थे ना, देन यू लाइक रोशी.
5: एक्चुअली आदत पड़ गई है मैम बोली. हाय रोशी, हाउ आर यू?
4: आई एम वेरी वेल डार्लिंग, आप कैसे हो?
5: मैं बहुत अच्छी हूँ.
4: अच्छे हो तो और अच्छे हो जाओगे. आंसर ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ओके? अभी दिसंबर 3-4 महीने दूर है, लेकिन अगर मैं आपको ऑलरेडी सांता क्लॉज बनके एक प्रेजेंट दे सकती, आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंज कर सकती, तो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वुड वांट?
5: मेरी विश ये होती कि जिस पर्सन से मैं लव करती हूँ उसको थोड़ा सा माइंड और दे दो कि वो समझ सके कि मेरी इंटेंशंस क्या है.
4: तो आप दोनों रिलेशनशिप में हो?
5: Yes.
4: कितने टाइम से?
5: 7 years.
4: 7 years, 7 साल हो गए. बंदे को भी तक समझ नहीं आया कि आपको किस तरह का प्यार अच्छा लगता है?
5: प्यार अच्छा लगता है उसको, ये समझ में आता है, बट उसको ये समझ नहीं आता उस चीज को प्रिटेंड कैसे करना है.
4: तो एक बात बताओ जरा, उसके बारे में टॉप 3 क्या चीजें हैं जो आपको बहुत इरिटेट करती हैं? लाइक अगर आप बदल सकते होते तो कल बदल देते.
5: मैं बदल सकती तो मैं जो मेरे को इरिटेट करते हैं ना किसी चीज को बोल के, वो चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते मैं क्या बोलना चाहती हूँ, उधर से फन वे में ले जाते हैं मेरे इंटेंशंस को. और एक था उनका जो मतलब फ्रेंड्स में जाके मेरे को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड कर देते हैं. नहीं
4: है?
5: हाँ.
4: ऐसा कैसे करते हैं वो? मतलब जब दोस्तों के साथ होते हैं, आप आसपास होते हो, भूल जाते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हो?
5: नहीं, मैं आसपास नहीं होती, वो दोस्तों के साथ होते हैं.
4: फोन नहीं करता आपको?
5: अकेले में. हाँ, तो मतलब मेरे को भूल जाते हैं कि वो भी कोई है. ठीक है, उसके साथ कुछ होगा, ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, इस तरीके से रहता हूँ.
4: तो 7 साल से ये वाला बिहेवियर एक्सेप्ट कर रही है?
5: हाँ, अभी कुछ ज्यादा हो गया, पहले नहीं था.
4: बेब, आई थिंक एक ना कॉन्सेप्ट होता है 7 ईयर एज का, ठीक है, कि 7वें साल में आते आते रिलेशनशिप्स में एवरीवन स्टार्ट्स टेकिंग देयर पार्टनर फॉर ग्रांटेड. तो देखो ना, उसको थोड़ा सा प्रिटेंड जेलस कराना चाहिए कि मेरे ऑफिस में एक बंदा है, ही इज रियली क्यूट, इट्स ओके, तू अपने बंदों के साथ क्रिकेट खेलने चले जा, मैं उसके साथ कॉफी पी लूंगी या उसके साथ चैट कर लूंगी, अपने आप लाइन पे आ जाएगा.
5: ओके,
4: आई एम सीरियस, इसे ट्राई करके देख, हो सकता है कि उसे थोड़ी सी अक्ल आ जाए.
5: हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ काफी टाइम से.
4: तो उसे ज्यादा भाव दे रही है इसलिए सर पे चढ़ रहा है. सीरियसली, नो किडिंग, इफ समवन इज नॉट ट्रीटिंग यू राइट इन अ रिलेशनशिप, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए, अपने आप लाइन पर आ जाएंगे.
5: या, sure.
4: नहीं तो एक और बॉयफ्रेंड बना लियो, ठीक है?
5: हाँ, ढूंढ लेना मेरे. अच्छा.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot
1: and अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: खाना बनाते हो या नहीं, my question to you is, पकोड़े की बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, मतलब चम्मच से निकालो तो ऐसे ऐसे फ्लूजी तरह से लोटता पोटता पहुंच जाता है फ्राइंग पैन में और फ्राई हो जाता है. लेकिन फ्राई होने से पहले तो कुछ कंसिस्टेंसी नहीं होती है. इट लुक्स लाइक वेट टोस्ट बेसिकली. दैट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी दैट ऑल माई एक्स बॉयफ्रेंड्स हैव हैड व्हेन इट कम्स टू इमोशनल स्टेबिलिटी. जिस तरफ देखो ना, जिस भी एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि यार इस बंदे का जो दिमागी हालत थी वो इतनी कॉम्प्रोमाइज थी कि आई रियली डोंट नो व्हाट वाज वर्स, देयर मेंटल कंडीशन और देयर फाइनेंशियल कंडीशन. एंड व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट मी, कि मुझे लड़के नहीं प्रोजेक्ट्स पसंद हैं. कि हम आपको लेंगे एक अनसक्सेसफुल अंडरडॉगर, हम आपको कन्वर्ट कर देंगे इनटू अ

में मिलता है तो why don't you hit me up? Maybe we are soul siblings. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. And while you find me on the gram या Facebook, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Roshi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज मैं आपको एक सीरियस ट्यूटोरियल देने वाली हूँ ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज अ प्लेयर या एक एफ बॉय. सो ये बंदा आपको डेटिंग ऐप पर मिलेगा, क्योंकि अगर आपको कहीं और मिलेगा तो योर फ्रेंड्स विल वार्न यू कि इससे दूर रहियो. बट मान लीजिए आप उसे डेटिंग ऐप पर मिलते हैं, वो इंसान आपको बहुत ही सटल तरीके से गैस लाइट करेगा. मतलब कि ये आपको मिलेगा और आपसे कहेगा, जो भी आपकी पर्सनैलिटी टाइप है, मेरे लिए तो बहुत ही सीरियस तरह की बंदी लगती है, आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क. अब आपके अंदर का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, नहीं यार मैं सीरियस नहीं हूँ, आई कैन बी अ लॉट ऑफ फन, एक बार ट्राई करके तो देख. फिर वो आपके साथ एक डेट पर जाएगा और कहेगा, हाँ यू आर अ लिटिल बिट फन, बट ऐसे मेरे तरह की पार्टी नहीं कर सकती. अब आप इंस्टेड ऑफ सेइंग हाँ दैट इज ट्रू, आई थिंक आई शुड एग्जिट दिस होने वाला रिलेशनशिप, आप पार्टी हार्डर करोगे टू ट्राई एंड प्रूव टू हिम कि वो जैसा आपको मान रहा है आप वैसा बिल्कुल नहीं हो. बाय द एंड ऑफ इट मेरी गारंटी है, यू विल एंड अप डेटिंग दिस एक्सट्रीमली टॉक्सिक पर्सन, एंड बाय द एंड ऑफ इट थेरेपी में मात्र आपके 2-3 लाख रुपए खर्च होंगे बिफोर यू रियलाइज कितने बड़े गधे थे आप. यू आर नॉट द ओनली पर्सन, लेट मी जस्ट टेल यू दैट आई हैव बीन सेलिंग इन दैट बोट सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स कि मैं एक प्रोफेशनल बोट्समैन बन गई हूँ फॉर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. अगर आप नोट्स कंपेयर करना चाह रहे हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर योर स्टोरी. मॉर्निंग ग्लोरी, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपनी गर्लफ्रेंड को आपने इसलिए डम कर दिया दैट शी हैज़ बॉडी ओडर, लेकिन आपने रीज़न दिया कि आपके पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे थे कि आप एक लव मैरिज कर दो. ऐसी गंदी गंदी सीक्रेट से कि कहाँ जाओगे आप? हाँ,
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: जाता कहा है दीवाने. वट एवर द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग वॉज, इफ यू हैव अ कन्फेशन मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान, और मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
4: Hi Roshi.
2: कैसे हो आप?
4: First of all, I am a big fan of yours and it's great that I'm talking to you.
2: It's a pleasure.
4: मुझे बहुत खुशी हो रही है.
2: मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और स्पेशली ये पता करके कि मेरी तरह दुनिया में और भी खुराफाती लोग हैं. It makes me feel very normal. अच्छा, तो आपने क्या गंदे गंदे काम कर रहे हैं जरा ये तो बताना.
4: हाँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं और किसी और से शेयर नहीं कर सकती, बट ओनली यू. तो मेरा बॉयफ्रेंड है, सो वी जस्ट स्टार्टेड डेटिंग और हम बस दो तीन डेट्स पर ही गए हैं. मुझे एक बात का बहुत डर था स्टार्टिंग से, कि मैंने अपने बैक पे टैटू कराया है किरण नाम का, और किरण था मेरा एक्स. ठीक है, तो अब वो टैटू मेरे को हटाने का टाइम ही नहीं मिला, और मतलब मुझे हटाना ही था. सेक्सी टैटू है, इतनी सेक्सी जगह है मेरी बैक पे. बट देन आई स्टार्टेड डेटिंग दिस गाय, ही इज अ वेरी नाइस गाय. तो हम जैसे जैसे हमारी डेट्स आगे बढ़ी, तो यू नो वी स्टार्टेड गेटिंग इंटीमेट. तो ऑब्वियसली उसने देख लिया, और ओ गॉड, जब उसने वो टैटू देखा, वी वर इन द मिडल ऑफ समथिंग, यू नो, सो वो एकदम से रुक गया एंड ही सेड ये क्या है. और मेरी शक्ल देखने लायक थी, एंड आई वाज लाइक क्या बोलू क्या बोलू क्या बोलू. सो मैंने उसको बोला, किरण, मैंने तुम्हें किरण के बारे में नहीं बताया. किरण वाज माय बेस्ट फ्रेंड एंड शी डाइड इन अ एक्सीडेंट, और उसकी बहुत ट्रेजिक डेथ हुई थी. तो मुझे उसकी एक निशानी अपने पास रखनी थी, इसीलिए मैंने उसका टैटू कराया.
2: कितने बड़े झूठे हो यार.
4: Yeah, we were in the middle of something and I didn't want it to stop. तो मैंने बोल दिया जो मेरे दिमाग में आया. बट
2: एक सेकेंड बिफोर आई रोशिफाई यू, आई विल रोशिफाई यू, दिस विल स्टे बिटवीन यू एंड आई. जब आपने उसे ये बोला कि किरण मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एंड शी पास्ड अवे इन ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस, उसके बाद योर इंटीमेसी गॉट बेटर ना, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था.
4: यस डेफिनेटली इट वाज.
2: कुछ कहने की जरूरत नहीं है, रोशिफिकेशन ले लो प्लीज.
0: यू've been roshified.
2: You know, to quote an ad, कई बार धाग अच्छे होते हैं. नहीं, in your case, तो it's true also.
4: Thanks so much for the roshification. I feel much better now.
2: You are most welcome, my darling. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी कन्फेशन है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

चाय में इलायची डाल के देखो, एंड आई एम नॉट इवन बिगिनिंग टू टेल यू अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ इलायची, लेकिन आपका जो लव मेकिंग प्रोसेस है ना, वो डेफिनेटली बहुत एनहांस हो जाएगा. सो कार्डमम इज बेसिकली एक ऐसा स्पाइस, यानी कि इलायची ऑफ कोर्स, दैट हेल्प्स यू इंक्रीज योर एनर्जी, और आपके अंदर जितनी भी टायर्डनेस होती है ना, वो सब खत्म कर देता है, ताकि आप एब्सोल्युटली रिफ्रेश फील करते हो. और क्योंकि ये एक गर्म मसाला है लिटरली, आपके ब्लड में इट गिव्स यू द राइट काइंड ऑफ हीट टू गेट द राइट काइंड ऑफ नॉटी. तो अगली बार आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कॉफी पीने जा रहे हो, डिच द कॉफी, गेट सम मसाले वाली चाय स्पेशली विद इलायची, एंड उसके बाद यू कैन थैंक मी इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम मिर्ची रोशी है, काम आपसे प्यार करना है, नाम की स्पेलिंग ROCHIE है, एंड ऑनेस्टली जिसके पास लव है ना, उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: हर हफ्ते बॉलीवुड की दुनिया में नए गाने जन्म लेते हैं। कुछ गाने पहली बार सुनते ही दिल में उतर जाते हैं, कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी रात की याद, किसी जर्नी का साउंड ट्रैक या किसी अधूरी कहानी की आवाज बन जाते हैं। उनके पीछे होती हैं ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से और ऐसे सवाल जो म्यूजिक खत्म होने के बाद भी हवा में ठहर जाते हैं। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का बॉलीवुड का सबसे डेफिनेटिव म्यूजिक काउंटडाउन। और आज का जो काउंटडाउन है वो भी एक म्यूजिकल जर्नी है, जहां मिलेंगे नए हिट्स, पुरानी यादें और उन गानों के पीछे छुपे वो राज जिन पर शायद आपने कभी उतना गौर नहीं किया। सो I've got you covered. Number 20 पर है Welcome to the Jungle का ये गाना, ऊंचा लंबा कद, which has been rehashed. लेकिन इस जर्नी की पहली धुन होगी कॉकटेल की माशूका। Turn the volume up. This is the Mirchi Talk 20. Let's go.
3: Number 19.

तमन्ना भाटिया की एक्टिंग चॉप्स और स्क्रीन प्रेजेंस अपनी जगह है, लेकिन ठुमक ठुमक देख के लगता है कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि अगर तमन्ना है तो एक डांस नंबर तो बनता है। एंड वन यार इसका ये गाना था जिसने नंबर 18 पर डेब्यू किया। I've already spoken about this song last week, लेकिन ट्रेलर देखते हुए मुझे एक ख्याल आया, यार बॉलीवुड ने जंगल को कभी प्रॉपरली खतरनाक बनाया ही नहीं। देखो हॉलीवुड में ऐसी बहुत फिल्में हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जुरासिक पार्क और द बीस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आप अगर एक जंगल में हैं या आप एक समंदर में हैं और सामने कोई ऐसा जानवर है जो आपको खा सकता है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। किसी भूत की जरूरत नहीं, किसी आत्मा की जरूरत नहीं, प्रकृति यानी नेचर खुद विलन है।

0: टाइगर अटैक्स, जंगल थ्रिलर्स एंड फिर अक्सर हम सुपर नेचुरल की तरफ मुड़ गए। यार इंडिया में इतने घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, डेंजरस एनिमल्स हैं और एक ऑडियंस है जो जेन्युइनली एज ऑफ द सीट सर्वाइवल थ्रिलर देखना चाहेगी, क्योंकि मैं तो देखूंगा। एक फैमिली, एक जंगल और सामने एक जानवर जो विलन नहीं है, बस जानवर है। लेकिन टॉकिंग अबाउट फैमिली, एक और परिवार है जो स्क्रीन पर हमें पागल करने वाला है, एंड दैट इज अजय देवगन यानी कि विजय साळगांवकर का परिवार। दृश्यम 3 का ये गाना विच डेब्यूट लास्ट वीक, दिस वीक इट्स ऑन नंबर 17, विंगंसा
1: नंबर 17।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Number 12.
2: Preet

सांसों की माला। कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो आपको किसी और वक्त में ले जाते हैं और उस सफर में सिर्फ मेलेडी नहीं होती, आवाज, इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम, हर चीज मिलकर एक जमाना बनाती है। अब नेक्स्ट गाने को ही देखिए, तबाही, टॉक्सिक, 90s में सेट एक फिल्म, लेकिन उसका साउंड आज का है। तो फिर सवाल ये है कि फिल्म को उसके वक्त का बनाता क्या है? शायद संजय लीला भंसाली से बेहतर कोई फिल्म मेकर इस सवाल का जवाब नहीं जानता।

इनकी धुन सुनते ही सिर्फ गाने याद नहीं आते, पूरी दुनिया याद आ जाती है। खामोशी में सन्नाटा भी सुर बन जाता है। देवदास में इंतजार ट्रेजेडी बन जाती है। बाजीराव मस्तानी में मोहब्बत बगावत बन जाती है। यही संजय लीला भंसाली का कमाल है। वो म्यूजिक से कैरेक्टर की फीलिंग नहीं, उसकी पूरी इनर वर्ल्ड दिखा देते हैं। कभी कभी लगता है वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, वो एक कॉम्पोजिशन कंडक्ट कर रहे होते हैं जो फिर एक फिल्म बन जाती है। लव एंड वॉर उनकी आने वाली फिल्म, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए इस बात का सबसे हॉन्टिंग एग्जाम्पल मेरे लिए देवदास का वो गाना है जहाँ इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और मोहब्बत मरने का नाम नहीं लेती। सिलसिला ये चाहत का, माय पिक।

0: सुरेन के साथ only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कुछ फिल्म मेकर्स की दुनिया इतनी खास होती है कि उस दुनिया के लिए हिट गाना बनाना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। सूरज बड़जात्या की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ गाना सिर्फ कैची नहीं हो सकता, उसे सिचुएशन में ही रहना पड़ता है, कहानी के साथ चलना पड़ता है और फिर भी हिट होना पड़ता है। ये प्रेम मोलिया पिछले हफ्ते नंबर 9 पर डेब्यू हुआ था इसका, लेकिन इस हफ्ते इसने छलांग मारी है टू नंबर 5, तो प्रूफ तो कर दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया के लिए सूरज बड़जात्या के साथ काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज आखिर है क्या?
1: मैं आर्ट के साथ थोड़ा सा कमर्शियली भी सोचता हूँ, और सूरज जी के साथ अपना म्यूजिक फिट करना उनकी पिक्चर में वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज वो अपनी सिचुएशन से नहीं हिलते। और मेरे लिए ये हो जाता है कि किसी भी तरह ऑडियो वैल्यू हो जाए, जो पहले बहुत सीमलेसली अगर आप देखें तो होता था, बिकॉज एक दायरा था जिसमें हम 3-4 लोग इंटरेक्ट करते थे, म्यूजिक बनाते थे और म्यूजिक को देखने का जो एक माहौल था बहुत बहुत क्लियर था, इस रेंज में सिंगर गाएगा। लेकिन आज बहुत चीज़ें बदल गई हैं, 7 लाख सिंगर्स हैं, 300 गाने रोज रिलीज होते हैं, उसमें एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक देना जो एक म्यूजिक डायरेक्टर का फर्ज होना चाहिए, कि अगर डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया है तो आप अपना काम उस शिद्दत से करो, बट उनके वर्ल्ड को चेंज मत करो, लेकिन अपना ऑडियो वैल्यू भी फॉलो करो। बिकॉज मुझे ऑलवेज ऐसा लगता है कि सिर्फ सिचुएशन को अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है, वो ग्रेट बात है, बट देन मेरे माइंडसेट से वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर है कि भाई सिर्फ फॉलो करता है, लेकिन आपको लिया गया है क्योंकि आपको हिट गाने भी चाहिए। लेकिन सूरज जी कि हम फैन भी हैं और एग्री भी करते हैं, और वो चाहे कितना भी बड़ा हिट गाना हो वो छोड़ देंगे, वो नहीं लेने वाले ऐसे कि मैं फिट कर लूं।
0: यानी फॉर्मूला सिंपल नहीं है, सूरज जी की दुनिया से बाहर भी नहीं जाना और उसके अंदर रहकर गाने को इतना बड़ा बनाना है कि वो दुनिया के बाहर भी सुना जाए। वाव, और शायद इसी बैलेंस का रिजल्ट है ये प्रेम मोलिया का नंबर 9 से नंबर 5 तक आना। फिर आता है एक ऐसा गाना जिसका कनेक्शन अपनी फिल्म से कम और 90s की यादों से ज्यादा है। आंखों से तूने ये क्या कह दिया इज ऑन नंबर 4, और अब सरप्राइज सरप्राइज एंड आल्सो अ शॉक कि पिछले हफ्ते का नंबर 1 गाना इस हफ्ते 2 स्पॉट्स नीचे है। किसने सोचा था, बट हियर इट इज ऑन नंबर 3, आवारापन 2 का एंड आल्सो आवारापन 1 का, तेरा मेरा रिश्ता।
2: नंबर 3।

वारू, नंबर 3 से नंबर 2 पर इस हफ्ते। और शायद इस गाने की खूबसूरती इसी में है, यह आपको एक लव स्टोरी का एहसास तो देता है लेकिन उसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। बाकी कहानी आप खुद लिखते हैं। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं सुनाते, वो उसके लिए एक पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, वो महलों में गूंजती है, पर्दों के पीछे छुपती है, शीशों में टूटती है और कभी कभी जंग के बीच भी जिंदा रहती है। वो बुलंद इमारतें, वो भारी पर्दे, वो शीशे, वो झूमर, वो कहने और वो घोड़े उस स्क्रीन पर आते ही कहानी को एक और जमाने में ले जाते हैं। यही तो संजय लीला भंसाली की दुनिया है, एक ऐसा भव्य दृश्य संसार जहां हर फ्रेम अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन अब भंसाली साहब खुद कह रहे हैं, इस बार ना इमारतें होंगी, ना पर्दे होंगे, ना घोड़े होंगे। लव एंड वॉर, एक कंटेम्प्रेरी कहानी, विंटेज फ्रेम, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और बीच में रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट। और यहीं से लव एंड वॉर का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, जब भंसाली अपने पहचाने हुए महल, पर्दे, झूमर और घोड़ों को पीछे हटा देते हैं तो क्या बचता है? 3 एक्टर्स, उनके चेहरे, उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक दूसरे के सामने उनकी मौजूदगी। यानी लव एंड वॉर में भंसाली साहब अपने भव्य विजुअल वर्ल्ड को दोहराने के बजाय एक्टिंग और एक्टर्स की प्रेजेंस को एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं। लेकिन भंसाली साहब के लिए असली सवाल शायद कुछ और है, जब दुनिया का स्पेक्टिकल हटा दिया जाए, क्या 3 एक्टर्स खुद स्पेक्टिकल बन सकते हैं? क्या रणबीर, विकी और आलिया अपनी परफॉर्मेंस से वो स्केल पैदा कर सकते हैं जो पहले भंसाली साहब के मैग्नम ओपसेस ने क्रिएट किया था? और इसलिए लव एंड वॉर सिर्फ संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म नहीं लगती, ये उनका अपनी ही पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। भव्यता को फ्रेम से हटाकर उसे एक्टर्स के चेहरों और परफॉर्मेंसेस में ढूंढने का एक्सपेरिमेंट। और शायद बॉलीवुड का स्पेक्टिकल भी बदल रहा है, चीजें नई हो रही हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें फिर से नई लग रही हैं। इस हफ्ते एक बार फिर से चोटी पर, शिखर पर, धुरंधर का गहरा हुआ बाय अरिजीत सिंह एंड शाश्वत सचदेव, द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 yet again। नंबर 1।

0: तेरा मेरा रिश्ता अब नंबर वन नहीं है, लेकिन कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि जो गाना उसकी जगह आया है वो अपने नाम की तरह वक्त के साथ और गहरा हुआ है। That was गहरा हुआ from धुरंधर once again on number one, लेकिन बस एक और हफ्ता, एक और सफर और बॉलीवुड की कहानी में कुछ नए पन्ने जुड़ गए। So until the next time we meet here on the Mirchi Top 20, this is your boy Suren, over and out.
1: के साथ only on Mirchi, it's hot.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई ना

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉकस्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो श्रेया हाजिर हो गई है। अब जैसे ही उस जमाने के गाने सुनोगे तो उस जमाने की बातें तो याद आएंगी, और जब बातें आएंगी तो इस जमाने की श्रेया याद आएगी। हेलो हेलो वेलकम। अच्छा, आज जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे ना, वो पहली फिल्म बड़ी सारी चीजों में थी, फर्स्ट इंडियन फिल्म जो कि सबसे लंबी थी, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर मेड, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसके दो ब्रेक्स थे, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसमें राज कपूर साहब कलर में थे, यानी द फिल्म दैट ही डिड वाज इन कलर, एंड द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसने भाई यूरोप में जाकर के अपने बहुत सारे सीन्स शूट किए। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बात होगी, यानी राज कपूर साहब की संगम की बात होगी। तो बस करेंगे बड़ा सारा संगम उस जमाने के गानों के साथ। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म संगम की बात हो रही है। वेल, ये फिल्म फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बहुत सारे मामले में थी। एक तो राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो कि लॉन्गेस्ट थी और इसमें दो एड ब्रेक्स थे, मतलब दो ब्रेक्स थे, नॉट एड ब्रेक्स, प्रॉपर ब्रेक्स थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। अब मैं ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ इसी फिल्म की। सो राज कपूर साहब ने इस फिल्म की स्टोरी ना वैजयंती माला जी को नरेट की थी और वो काफी टाइम तक उनका वेट करते रहे कि अब भाई वैजयंती माला से यस आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा कि वो ये फिल्म करना चाहती हैं, वो उनके ऑपोजिट उनकी राधा बनेंगी। लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। एक महीना, दो महीना, तीन महीने बीत गए। फिर उस टाइम पे ना टेलीग्राम चलते थे, यानी अब मैं कैसे बताऊँ, आजकल का व्हाट्सएप आप ले लो, एज इन लेटर्स जाया करते थे पोस्ट कार्ड्स के थ्रू, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी मैसेज पहुँचाना होता था वो टेलीग्राम के थ्रू होता था। तो एक दिन, एक शाम को राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिखा वैजयंती माला को और उन्होंने उस टेलीग्राम में लिखा, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। क्योंकि इसमें वैजयंती माला जी का जो रोल था वो राधा कहलाना था। आगे क्या हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी आपको वापस श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तो राज कपूर साहब ने लिख करके पूछ लिया टेलीग्राम के थ्रू, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। फिर क्या, उधर से भी टेलीग्राम आया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आज संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट फिल्म ऑफ राज कपूर साहब जो कि कलर में थी, इंडिया की पहली फिल्म जो यूरोप जाकर के शूट हुई थी, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर। ऑफकोर्स इसके बाद आई थी मेरा नाम जोकर जो और भी लंबी थी। सो मैं बात कर रही थी कि जब राज कपूर साहब ने ना इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, इस फिल्म का नरेशन अपनी हीरोइन वैजंती माला जी को सुनाया तो वो ही वॉज वेटिंग कि भाई अब हाँ आएगी, अब हाँ आएगी, लेकिन वैजंती माला की कोई हाँ ही नहीं आई। 2 से 3 महीने के बाद राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिख करके भेजा। उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मूवी का नाम संगम और कैरेक्टर जो कि वैजंती माला को करना था उसका नाम राधा। तो उधर से भी एक रिप्लाई आया टेलीग्राम के थ्रू, होगा होगा होगा। और इसी को भाई इस गाने में रखा गया, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। वैजंती माला जी का होगा होगा होगा भी है इस गाने में। कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज
1: अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीत राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ये वही टाइम था जब इंडस्ट्री के तीन दिग्गज दिलीप साहब, राज कपूर साहब और देवानंद कोशिश कर रहे थे हिंदी सिनेमा में कलर लाने की। इसीलिए उनके सामने अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आ रही थी वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। एंड दैट इज व्हाई राज कपूर और देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर में सबसे पहली कलर फिल्म्स लॉन्च करी। वेल, दिस वाज द टाइम जब देवानंद पहली फिल्म विच वॉज इन कलर अंडर नवकेतन प्रोडक्शंस गाइड इसको बना रहे थे, एंड साइमल्टेनियसली राज कपूर साहब आरके फिल्म बैनर के अंडर संगम बना रहे थे। ये दोनों फिल्में ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ साथ रिलीज हुई थी। पुरानी जीन्स पे आज संगम की बातें चल रही हैं, तो बस कहीं भी मत जाइएगा, इस फिल्म की बातों का और इस फिल्म के गानों का संगम भी होता रहेगा यहाँ।
1: मेहरबान लिखूं

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने बस ठान लिया था कि वो ना दिल्ली में जाकर के इस गाने की शूटिंग करेंगे, लेकिन उनको वो थोड़ा सा सुनसान रास्ता, वो पेड़ पौधे जिस पे वो बस चल रहे हैं गाना गाते हुए, वो लोकेशन दिल्ली में मिली नहीं रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इट इज सेड दैट द शोमैन ना हैड अ कीन नज़र। जब उनको लोकेशन चूज करनी होती थी तो वो यू नो एक से एक एग्जॉटिक लोकेशन भी कैंसिल कर देते थे अगर उनको लोकेशन में मजा ना आए तो। तो जो अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ फ्रॉम द फिल्म संगम, ये है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। इस गाने की शूटिंग के लिए राज कपूर साहब को ना एक सन्नाटे वाली सुनसान सी रोड चाहिए थी, और ऐसा चाहिए था कि बहुत सारे पेड़ पौधे हों। वो दिल्ली गए अपनी पूरी यूनिट को लेकर के, लेकिन वहाँ पे ना उनको कोई लोकेशन ही नहीं समझ में आ रही थी। आखिरी दिन जब हताश होकर के लौटने वाले थे, उनकी नज़र पड़ी एक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे, एंड देन ही सेड कि अरे बस यही तो मैं ढूंढ रहा था। स्पेशल परमिशन ली और ये गाना एक्चुअली में दिल्ली में शूट हुआ है। ये गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने पूरा फ्रीडम दिया दिलीप साहब को, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि दिलीप साहब इस फिल्म में उनके साथ काम करें। तो उन्होंने ये फ्रीडम दिया कि वो कोई भी रोल चूज कर सकते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ फिल्म संगम की, जो आर के फिल्म की फर्स्ट कलर फिल्म भी बनी। सो राज कपूर साहब वॉन्टेड टू वर्क विद दिलीप साहब, ही रियली वॉन्टेड कि वो किसी तरह इस फिल्म में आ जाए। तो उन्होंने ना उनको ऑप्शन दिया था कि वो रोल भी चूज कर सकते थे जो राज कपूर साहब का था, और वो रोल भी चूज कर सकते थे जिसमें बाद में राजेंद्र कुमार आए। दिलीप साहब का कई महीनों तक का हाँ का वेट करते करते जब वो एक दिन दिलीप साहब से मिलने गए, तो दिलीप साहब ने उनको साफ साफ पता है क्या कहा कि वो राज कपूर के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि दिलीप साहब ने कहा कि तुम्हारी फिल्म है और इसमें पूरी लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे, यू आर द शोमैन। फिर ये रोल गया राजेंद्र कुमार को, लेकिन एक बैकअप प्लान भी था। क्या था बताऊंगी आपको, श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिरोज खान ना एंड तक बस ये होप करते रहे कि शायद शायद शायद ऊपर वाले प्लीज राजेंद्र कुमार इस रोल के लिए मना करते हैं। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, इंडिया की पहली फिल्म जो कि यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म। सो मैं बता रही थी कि इसमें जो रोल किया है राजेंद्र कुमार ने, वो रोल सबसे पहले दिलीप साहब को गया था, लेकिन दिलीप साहब ने राज कपूर साहब को ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई सारा लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे बिकॉज यू आर द शोमैन। फिर उसके बाद ये रोल गया राजेंद्र कुमार को। अब राजेंद्र कुमार जब तक यस कहते तब तक राज कपूर साहब को अप्रोच किया उनके दोस्त फिरोज खान ने, और फिरोज खान का बेहद मन था टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एवरीबडी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ आर के फिल्म्स। तो क्या हुआ, हुआ ये कि भाई राज कपूर साहब ने उनको प्रॉमिस किया कि अगर राजेंद्र कुमार मना कर देंगे तो ये रोल फिरोज खान करेंगे। अब भाई राजेंद्र कुमार ने मना नहीं किया और फिरोज खान का वो सपना टू बी अ पार्ट ऑफ राज कपूर फिल्म्स वो सपना ही रह गया। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें यानी संगम की बातें विद मी श्रेया। और हाँ, अगर मुझसे कुछ अलग से पर्सनल बात करनी हो तो फेसबुक और इंस्टा पे तो मैं हूँ ही, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

इस खत को गाने में बदला था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम। सो हसरत जयपुरी साहब, शंकर जयकिशन जी, ये इनकी टीम थी, गाने बनाया करते थे। शंकर जयकिशन जो थे वो गाने कंपोज करते थे और हसरत जयपुरी गाने लिखा करते थे। राज कपूर साहब की फिल्मों में या तो हसरत साहब गाने लिखते थे या फिर शैलेंद्र जी। सो हुआ ये कि हसरत साहब का आर्ग्यूमेंट हुआ शंकर जयकिशन जी से एंड इसकी वजह से ना इन लोगों में काफ़ी लंबे अरसे तक बात नहीं हुई। अब क्या हुआ, हसरत साहब ने एक दिन ख़त निकाला और वो अल्फाजों के धनी तो थे ही। उन्होंने उस ख़त पे लिखा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। और जैसे ही शंकर जयकिशन जी

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब इसी फिल्म से एडिटर भी बने थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ मूवी का नाम है संगम, जो आर के फिल्म की पहली कलर फिल्म थी। इस फिल्म को एडिट भी करने वाले थे राज कपूर साहब, एंड इसके बाद उन्होंने अपनी सारी फिल्मों को एडिट किया, फिर चाहे वो मेरा नाम जोकर हो या फिर बॉबी हो। तो इसी फिल्म संगम का बड़ा खूबसूरत गाना है आपके लिए हर दिल जो प्यार करेगा। अप नेक्स्ट

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुंबई के फेमस सिनेमा हॉल का नाम संगम रख दिया गया था। अंधेरी ईस्ट में है आज भी ये फेमस सिनेमा हॉल जिसका नाम है संगम। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इस हॉल के जो ओनर्स थे ना, देवर टंडन फैमिलीज एंड देवर ह्यूज फैन ऑफ राज कपूर साहब। राज कपूर साहब जब अपनी फिल्मों को लॉन्च करते थे तो बस इसी हॉल में ना प्रीमियर्स भी होते थे, तो राज साहब खुद भी जाया करते थे। ये पूरी फैमिली राज साहब की, द शोमैन की, इतनी बड़ी फैन थी कि आफ्टर द फिल्म संगम दे एक्चुअली नेम्ड देयर हॉल एज संगम। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ इसी फिल्म की नॉन स्टॉप बातें चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना। और हाँ, अगर श्रेया से वन टू वन बात करनी है, इस आवाज के पीछे भी जो चेहरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा ऑन फेसबुक और इंस्टा, RJ श्रेया विद लव। दैट्स RJ SHREYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

only on Radio Mirchi New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सारी कास्ट एंड क्रू ओवर एक्साइटेड थी कि उनको इंडिया के बाहर वो भी यूरोप जाने का मौका मिल रहा है, और इंडियन ऑडियंस इसलिए एक्साइटेड थी कि उनको बड़े पर्दे पर यूरोप दिखेगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी शॉट इन यूरोप, और इसके लिए ना राज कपूर साहब भाई वैजंती माला को एंड राजेंद्र कुमार को खुद को और भी कास्ट एंड क्रू के करीब 10-15 लोगों को बाहर यूरोप लेकर के गए थे। ये पहली इंडियन फिल्म थी जो बाहर जाकर के शूट हुई थी और वो भी यूरोप में शूट हुई थी। सो इंडियन ऑडियंस में ना ऑलरेडी बाय वर्ड ऑफ माउथ ये स्प्रेड हो चुका था कि इसमें तो फॉरेन भी है। तो कहते हैं कि संगम को देखने ना लोग फैमिली भर भर के आई थी और बार बार आ रही थी। इतना मेजर क्रेज हुआ कि अंधेरी का एक सिनेमा हॉल था और उसकी जो टंडन फैमिली, एज इन द ओनर्स वर द टंडन फैमिली, उन्होंने अपने हॉल का नाम रख दिया था संगम हॉल, जो आज भी संगम हॉल के नाम से फेमस है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.

Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

चले। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, यानी गाड़ी में बैठोगे एंड वी विल हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो किसी से इतना प्यार करते हैं कि वो जहाँ जहाँ रहते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाते हो, चाहे फिजिकली हो ना हो, मेंटली उनके साथ होते हो। और जिस भी सिचुएशन में वो बंदा होता है ना, उनको एनकरेज करते ही रहते हो, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई साया है तो उसे ना हमेशा पकड़ के जकड़ के रखो। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना एंड गुड नाइट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: टक टक टक

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.
1: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉक्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब
4: मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot
1: and अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉकस्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट रेडियो मिर्ची।
1: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।
2: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: किसी अपने के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी क्या उनका कनेक्शन हमसे बना रहता है, आइए श्राद्ध पक्ष के महीने में इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर नीदा फाजली जी के जब फादर गुजरे ना, तो उन्होंने एक नज्म लिखी थी जिसका शीर्षक था वालिद की वफात पर, और उसमें वो लिखते हैं कि तुम्हारी कब्र पर मैं फतीहा पढ़ने नहीं आया, फतीहा यानी कि दुआ मांगने नहीं आया। और जब मैं वो पढ़ता हूँ ना, तो इत्तेफाक की बात है, मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आती है। और इस वक्त जो है पितृपक्ष चल रहा है और श्राद्ध का जो समय है करीब 2 हफ्ता होता है, तो इस समय बहुत तर्पण होते हैं, भोज होते हैं, फ्रेम को निकाल के साफ किए जाते हैं एक्सेट्रा। और जब भी ये समय आता है मुझे नीता फाजली जी की जो नज़्म है वो याद आती है। और मैं एक चीज़ हमेशा सोचता हूँ इस बारे में कि कई बार क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि हमने जो लोग चले गए, जो लोग गुजर गए, उनसे कोई किसी बात पे झगड़ा कर लिया, किसी बात पे अहंकार हुआ, किसी बात पे हमारी कोई अनबन हो गई और हम उनको सॉरी नहीं बोल पाए और ये बात रह जाती है। साल दर साल हम श्राद्ध तो करते हैं लेकिन शायद वो बात नहीं कह पाते जो हम दरअसल उनको कहना चाहते हैं, वो फूलों के बीच कहीं ढक कर रह जाती है। तो ऐसे किस्म क्या करें?
4: श्राद्ध का जो समय होता है वो अपने पूर्वजों को याद करने के लिए होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो रिश्ता था वो हमेशा ही सोल से था, बॉडी से नहीं होता है। जिस समय होते भी हैं सामने तो भी जो कनेक्शन है वो सोल के साथ होता है। अब जब हम कहते हैं कि अच्छा ये मर गया, श्राद्ध तो उसके बाद ही है ना, तो मर गया तो कौन मर गया? शरीर मर गया, आत्मा तो अविनाशी है, इटर्नल है। तो आप जो भी उनसे कहना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कनेक्शन इज सोल टू सोल कनेक्शन।
3: क्या बात है,
4: वो वाइब्रेशन अभी भी उन तक पहुंचता है। जब तक वो यहाँ है वर्बल कम्युनिकेशन है, अगर नहीं है तो वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन है, पर कम्युनिकेशन तो आज भी कर सकते हैं।
3: आपने बहुत कमाल की एक कहानी, मुझे कहानी नहीं हकीकत है, उसके बारे में याद दिला दी। 2010 की बात है, जापान में ना एक बहुत छोटा सा शहर है, ओत्सुची नाम है शायद उसका, और वहाँ पे एक इंसान है इतारू ससाकी। उन्होंने 2010 में अपने कज़न को खो दिया था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने घर के जो लॉन होता है वहाँ पे उन्होंने एक टेलीफोन बूथ स्थापित किया, और उसके अंदर वो जो पुराना रोटरी डायल वाला जो टेलीफोन होता है वो वहाँ पे लगाया, और वो किसी लाइन से कनेक्टेड नहीं था लेकिन उससे वो अपने कज़न से बात करते थे और जो भी मन में था वो बोल देते थे। और इत्तेफाक देखिए कि 2011 में जापान में सुनामी आया था, और उसके बाद लाखों करोड़ों लोग उसको विंड फोन बोलते हैं, वहाँ पे जाके उन लोगों से बात करते हैं जिनसे वो छूट चुके हैं, जिनसे कोई अब रिश्ता कायम करना मुश्किल है, और उनको वो सारी बात बोल पाते हैं जो शायद वो जिंदा रहते उनको नहीं बोल पाए, और उनको बहुत शांति मिलती है एक्सेट्रा। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और आपने मुझे इस बात की याद दिला दी कि कैसे जिंदा रहते वक्त हम वो बात नहीं बोल पाते हैं, लेकिन एक विंड फोन के माध्यम से जापान में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी बात उन तक पहुंचाई है जो जिंदा रहते नहीं बता पाए हम।
4: पर जिंदा रहते कहना जरूरी है,
3: बिल्कुल
4: करना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लाइफ में रिग्रेट्स को जगह क्यों नहीं देनी चाहिए, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी हम कहते हैं मुझे उनसे वो बात कहनी थी या माफी मांगनी थी या वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। इनफैक्ट रोज रात को सोने से पहले भी अपने को एक बार ही देख लेना चाहिए कि अगर कल नहीं उठे किसी कारण से, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, रिग्रेट्स नहीं होनी चाहिए। और जो चीज हमें बात नहीं करने देती या कई बार सॉरी नहीं बोलने देती वो है तो हमारी ईगो ही ना,
4: बिल्कुल,
3: और तो कुछ नहीं है। अपनों के सामने ईगो नहीं होनी चाहिए।
4: तो निदा फाजली की जो नज़्म में कह रहा था, जो उन्होंने वालिद साहब के जाने के बाद जो लिखी थी कि तुम्हारी कब्र पर मैं फतीहा पढ़ने नहीं आया, यानी कि दुआ मांगने नहीं आया, उसकी जो आखिरी दो लाइन है वो ये है कि मुझे यकीन है कि तुम मर नहीं सकते। तो बेसिकली उनका भी शायद कनेक्शन जो है वो सोल से था, बॉडी से नहीं था।
3: कनेक्शन तो होता ही सोल के साथ है। जिस समय वो बॉडी में होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं अभी तो अलाइव है, उस समय पर भी हमारा सोल के साथ ही कनेक्शन होता है। हम फील जो कर रहे होते हैं
4: वो सोल
3: ही सोचती है।
4: सही बात,
3: वो मुख के द्वारा बोलती है, आंखों के द्वारा देखती है, लेकिन जो क्वालिटी है वो तो सारी सोल के अंदर है ना। तो कनेक्शन हमेशा उसके साथ होता है। इसलिए आप देख लें कि कई बार अगर वर्बल लेवल पर नहीं भी होता तो हम सबको टेलीपैथी का अनुभव है कभी ना कभी।
4: हाँ, कई बार होता है।
3: तो टेलीपैथी में हुआ क्या, कोई वर्बल कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं, आपने किसी को फोन तो किया नहीं,
4: एनर्जी आई कहीं से।
3: हाँ, पर एनर्जी तो वो सोल कनेक्शन तो हो गया ना। बहुत दूर थे, कोई दूसरे शहर में था, कोई दूसरे देश में था,
4: बिल्कुल।
3: लेकिन ज्यादातर टेलीपैथी उनके बारे में होती है जो बहुत नजदीक का रिलेशन हो। मदर चाइल्ड में बहुत होती है
4: जी, बिल्कुल।
3: मदर को पता चल जाता है, बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं होगी तो पता चल जाएगा। बच्चा मदर के बारे में सोच रहा होता है, मदर बच्चे के बारे में सोच रही होती है, दोनों माइंड कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के थॉट्स को पकड़ लेते हैं। अब अगर ये यहाँ पर हो सकता है जब आप दो दूसरे देश में हैं, तो ये तब भी हो सकता है जब किसी ने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया।
4: क्या बात, बहुत बढ़िया।
3: मरना किसको कहते हैं, चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। आपका ड्रेस चेंज हो गया, ये शरीर रूपी चोला कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया। सोल तो अभी भी है, इटर्नल है, ना मर सकती है, ना उसको कोई काट सकता है, ना उसको कोई जला सकता है। तो आज भी अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप कह सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: चार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पितृ पक्ष से जुड़ी कौन सी जरूरी बातें हमें पता होनी चाहिए, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ये जो पितृ पक्ष जिसको कहते हैं, जो श्राद्ध का समय चलता है, मैं बचपन में हमेशा सोचता था कि हमें जिंदगी को सेलिब्रेट करना चाहिए जो चले गए हैं, और इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि अगर कोई दुनिया छोड़ के जा चुका है तो उनके डेथ को हमको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन फिर श्राद्ध क्यों होता है? व्हाट इज द पर्पस, सिग्निफिकेंस क्या है इसका?
4: श्राद्ध बेसिकली हर साल, जैसे आपने कहा, 14 to 16 डेज के लिए आता है, और ये समय होता है अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। ये समय ग्रेटिट्यूड का भी होता है, क्योंकि हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, तो धन्यवाद करने के लिए। इन दिनों में कई लोग दान पुण्य बहुत करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं
3: जी।
4: ये दिन इसलिए भी होते हैं कि आप हायर पावर से कनेक्ट हो।
3: हाँ।
4: और ये दिन ये रिमाइंडर के लिए भी होते हैं कि आपने भी एक दिन जाना है,
3: सब टेम्पररी है,
4: तो कैसा आपको जीवन जीना है।
3: हाँ।
4: और जब आप जाएंगे तो साथ में क्या लेकर के जाएंगे,
3: क्या बात।
4: और इसीलिए इन दिनों के अंदर बहुत मटेरियल चीजों के प्रति
3: बिल्कुल
4: ध्यान नहीं देते, क्योंकि समझते हैं कि अंतर की यात्रा है।
3: हाँ।
4: इंट्रोवर्जन, कनेक्शन विद द सुप्रीम।
3: हाँ।
4: इसलिए इन दिनों में कुछ नया खरीदना, कुछ मतलब जितना हो सके कंज्यूमरिज्म से हट करके, मटेरियलिज्म से हट करके उसको याद करें।
3: हाँ।
4: पूर्वजों को याद करें, उनके शिक्षाओं को याद करें, और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं।
3: अच्छा।
4: उसके बारे में हम सोचें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: पितृ पक्ष में कई लोग शुभ कार्य क्यों नहीं करते, क्या इसके पीछे कोई वजह है? आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, श्राद्ध में एक चीज और मैं देखता हूँ कि बहुत लोग नया कार्य शुरू नहीं करना चाहते। कोई नया बिजनेस हो, कोई नया गीत आया, कोई नई चीज आपने लॉन्च की, कोई नया प्रोडक्ट आया, वो उस समय नहीं करना चाहते। खरीदारी तो अलग बात है कि मैं कोई मटेरियलिस्टिक चीज से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी कहते हैं कि शुभ कार्य का जो समय है वो श्राद्ध के से कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं?
5: देखो, शुभ अशुभ तो नहीं होता इन दिनों में, और इन दिनों में जितनी प्रेयर्स हो रही हैं, दान पुण्य हो रहा है, और किसी भी समय पर नहीं हो रहा होता।
4: बिल्कुल,
5: ये तो बहुत ही प्योर दिन हो जाते हैं एक तरह से आप देखें।
4: इसलिए मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ।
5: हाँ, नहीं, ये दोनों को मिक्स नहीं करना चाहते।
4: अच्छा,
5: आपने ये दिन डेडिकेट किए हैं, शास्त्रों ने ये दिन कई बार डेडिकेट कर दिए हैं कि ये प्रेयर के लिए है, ये चैरिटी के लिए है, ये डोनेशन के लिए है, ये पूर्वजों को याद करने के लिए है। अब अगर आप इसके अंदर वो सब चीजें ले आएंगे तो ये रह जाएगा। वैसे कोई अशुभ नहीं है, पर अगर इन दिनों में आप कुछ नया खरीदना शुरू कर दें, कुछ नया करने लगे, तो आपकी बुद्धि उसके अंदर इंग्रॉस हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी, तो कुछ दिनों के लिए हम सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मानसून के महीनों में खास श्रावण होता था कि अच्छा इस समय पर कोई काम नहीं है, इस समय पर थोड़ा काम कम है, अच्छा तो ये प्रेयर में डाल दो, तो कई लोग नंगे पांव चल चल करके जाएंगे कि ये दो महीना एक महीना। तो पहले साल ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, कुछ समय काम के लिए, कुछ समय प्रेयर के लिए, कुछ समय परिवार के लिए। जितने त्योहार आते हैं, सेलिब्रेशन आते हैं, ये परिवार के लिए है।
4: बिल्कुल,
5: तो मैं जहाँ तक समझती हूँ इसमें कुछ अशुभ नहीं है, लेकिन अगर एक ने शुरू किया और सब ने शुरू कर दिया तो फिर वो जो दिन जिस पर्पस के लिए थे वो पर्पस खत्म हो जाएगा, वो फोकस खत्म हो जाएगा।
4: बहुत बढ़िया।
5: धीरे धीरे क्या होता है, सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है और डर क्रिएट होने लग जाता है। इस समय पर अगर हमने ऐसा कुछ
4: तो
5: किया
4: अशुभ हो जाएगा,
5: तो अशुभ हो जाएगा, गलत ना हो जाए। फिर कहीं कहते हैं नहीं, हमने देखा है अशुभ होते हुए।
4: सही बात है।
5: वो इसलिए देखा है कि अगर आपने किसी चीज को बिलीफ में डाल दिया ना कि अगर हमने ऐसे में किया तो अशुभ होगा, तो जैसा संकल्प
4: वैसी सृष्टि
5: बनेगी। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे, जैसे वो कोई सोच ले बिल्ली रास्ता काटेगी तो गलत होगा, तो वो होगा। यू ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ योर मोस्ट डोमिनेंट थॉट। तो कभी आपको कुछ करना भी पड़ता है, कुछ आवश्यक भी है, आप इस प्रकार का कोई भी गलत या नेगेटिव थॉट न क्रिएट करें। बाकी तो इन दिनों में जितना हम अच्छा करें, पूर्वजों को याद करें, दान पुण्य करें, वो अच्छा है।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जो अपने इस दुनिया से चले गए हैं, क्या पितृ पक्ष में किया गया आपका संकल्प उन तक पहुंचता है? आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, श्राद्ध के समय ज्यादातर हम देखते हैं बहुत सारी पूजा वगैरह होते हैं, लोग अपने घर जाके अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि याद करने का एक सही तरीका जो है, ऐसा भी कुछ होगा, वो किस तरह से होता है?
4: जब सोल चली जाती है तो उसके पास कुछ भी फिजिकल तो पहुंच नहीं सकता। उसके पास सिर्फ जो पहुंच सकता है वो है आपका वाइब्रेशन। तो जब भी हम उनको याद करते हैं, एक्चुअली हमारा संकल्प ही उन तक पहुंचता है।
3: जी,
4: आप भले पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन उस पूजा के अंदर पूजा भी किस लिए होती है? कि आपका मन पवित्र हो।
3: हाँ।
4: और उस पवित्र मन के अंदर जो संकल्प उठे उसका वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचेगा।
3: बिल्कुल।
4: कुछ फिजिकल कुछ मटेरियल तो पहुंच नहीं सकता।
3: हाँ।
4: तो बेस्ट तरीका जो याद करने का है, जो हमें सिर्फ श्राद्ध के दिनों में नहीं,
3: हाँ,
4: सदा ही किसी को याद करते हैं, जैसे अगर कोई यात्रा में आगे जाता है या कोई यात्रा पर जा भी रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे?
3: भाई सब कुछ अच्छा हो, खुश, अपना ध्यान रखना,
4: यही होता है।
3: हाँ।
4: जो आगे चला गया आप उसके लिए यही दुआ करते हैं।
3: हाँ।
4: कि वो सफल हो, सब अच्छा हो, उसको हर प्रकार की खुशी मिले, उसको अच्छा परिवार मिले, उसको अच्छी सेहत मिले, उसको आगे जीवन में बहुत सफलता मिले। तो दुआएं, आपके हर संकल्प में उस आत्मा के लिए दुआ है कि वो लौट करके तो नहीं आ सकता।
3: सही बात है।
4: लेकिन जो उसकी आगे की यात्रा है उसमें उसको सब कुछ बहुत अच्छा मिले, ये हमारे दिल की शुभ भावना, शुभकामना, दुआ और प्रेयर है। जितना हम ये करते हैं उतना उस आत्मा को वो एनर्जी फील होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आत्मा भले ही अपना रूप बदल ले, लेकिन क्या आपकी दुआ उन तक जरूर पहुंचती है? आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, अभी श्राद्ध का समय चल रहा है और मेरे मन में इन दिनों में एक हमेशा सवाल आता है। पूछने से पहले ही आपको कह रहा हूँ, शायद थोड़ा बेवकूफ़ों वाला लगे, लेकिन मन में आया तो पूछ लेता हूँ कि मुझे हमेशा लगता है कि आत्माएं आगे चली गई। जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है वो चली गई। आप अगर 5-7-10 साल आप उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए गुड विशेस देते हैं, तो मुझे समझ में आता है। लेकिन हम अक्सर बोलते हैं कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, महीनों में वो जो आत्मा है वो दूसरे शरीर का कॉस्ट्यूम ले लेती है, कहीं और किसी में चली जाती है। तो फिर हम जो दुआएं भेज रहे हैं वो भेज किसके रहे हैं? क्योंकि हमने जो कॉस्ट्यूम देखा था वो तो अलग कॉस्ट्यूम था, अब वो एक अलग जर्नी में निकल चुके हैं। तो हम अपना कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंच भी रहा है वो?
4: दुआ कॉस्ट्यूम के लिए नहीं, दुआ आत्मा के लिए।
3: हाँ,
4: तो भले आत्मा ने अपना कॉस्ट्यूम चेंज भी कर दिया है,
3: हाँ,
4: आपकी दुआ फिर भी उसको
3: पहुंचती है,
4: पहुंचती ही है। और मुझे कई बार ये भी लगता है कि ये दिन इसलिए भी बनाए जाते हैं कि हम कॉन्शियसली दुआ करना सीखें, हम कॉन्शियसली समय निकालकर धन्यवाद करना सीखे। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, नहीं तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो उस आत्मा को वही मिलना है जो उसके कर्मों का हिसाब किताब है।
3: हाँ।
4: कोई हमारे सोचने से किसी की तकदीर नहीं बदलती है।
3: हाँ।
4: लेकिन हम अच्छा सोचें, हम धन्यवाद करें, हम दुआ दें, हम उनका शुक्रिया करें, ये हमारा श्रेष्ठ कर्म है। तो वो निमित्त बन जाते हैं हमारे को श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए। दान पुण्य हम करते हैं, हम उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए कर रहे हैं। दान पुण्य आप कर रहे हैं,
3: सही बात है,
4: जो कर रहा है वो उसको मिलेगा। लेकिन वो आत्मा निमित्त बने।
3: वाह, क्या बात।
4: तो जाने के बाद भी वो आत्मा निमित्त बनी आपसे अच्छा कर्म कराने के लिए।
3: बहुत बढ़िया।
4: नहीं तो हम वो अच्छा कर्म करना ही भूल जाते हैं, अच्छा सोचना ही भूल जाते हैं, शुक्रिया करना ही भूल जाते हैं। तो जो हम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका बेनिफिट से ज्यादा बेनिफिट इन दिनों में हमारा होता है अगर हम सही तरीके से करते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर नरेश सिंघवी लिखते हैं कि मेरे घर में सिर्फ चार ही लोग रहते हैं और हमेशा झगड़ा होता रहता है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे घर में शांति बनी रहे?
3: झगड़े का कारण ईगो होती है।
2: हाँ,
3: ईगो यहाँ पर जो हम कहना चाहते हैं, ईगो में क्या होता है, मैं राइट हूँ आप रॉन्ग है। तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं
2: जी,
3: कहीं कहीं घरों में आप देखेंगे बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट का कारण ही ये है कि आप ये नहीं समझते कि दो जने अलग अलग हैं। तो मैं भी सही हूँ, वो भी सही है, दोनों अपने पर्सपेक्टिव से राइट है। फिर हम वो कर सकते हैं जो हमें ठीक लगता है। जरूरी नहीं है कि हम वो करें जो उनको ठीक लगता है, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट देना, सुनना, आर्ग्यूमेंट की जगह आपस में बैठ करके डिस्कशन करना, वो जरूरी है। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, कोई दो कहता है, हम चार कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्रोध में हमेशा एक अगर अपसेट है तो दूसरे को शांत होना बहुत जरूरी है। हम कई बार कहते भी ये हैं, मैं बिल्कुल ठीक था, उसने ऐसा किया ना तो मुझे भी गुस्सा आ गया।
2: हाँ, प्रोवोक कर दिया उसने मुझे।
3: उसने प्रोवोक किया, लेकिन वो वही ट्रिगर कर सकता है जो आपके अंदर है ना।
2: हाँ।
3: वो ट्रिगर तो कर सकता है। अब वो गुस्सा कर रहा था, नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा था, आपके पास चॉइस थी। आप प्रोवोक होकर के वापस गुस्सा कर सकते थे, या आप चूज कर सकते थे कि ऑलरेडी एक अगर अपसेट है, इधर अगर हम शांत रहते हैं, गलत नहीं बोलते हैं,

0: गलत नहीं रिएक्ट करते हैं, सामने वाला थोड़ा समय तक अपसेट रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो भी शांत हो जाता है। वाइब्रेशन इधर खड़े होकर के आप शांति का वाइब्रेशन भी रेडिएट कर सकते हैं।
1: सिस्टर, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक आदमी ट्राई करे कि मैं शांत रहूं, आदमी औरत जो भी है, उस बात पे भड़क जाते हैं कि तुम्हें कुछ बोलने को नहीं है, मैं कब से बोल रही हूँ, कब से बोल रहा हूँ, तुम शांत हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, तो ऐसे सिचुएशन में फिर भी शांत बने रहे।
0: जब कोई हर्ट होता है ना, तो उसको ये अच्छा लगता है कि सामने वाला भी हर्ट है,
1: मना मुझे ही दर्द क्यों है, तुम्हें भी होना चाहिए,
0: वो दर्द देना भी चाहता है ना, हर्ट पीपल हर्ट पीपल,
1: राइट।
0: और फिर उसको अच्छा भी उसी में लगता है कि जब सामने वाला, कई बार आप देखें ईगो सैटिस्फाई हो जाती है,
1: हाँ।
0: कि सामने वाला दुखी है, रोने लगा है, अपोलॉजी मांग रहा है, इतने लेवल तक हो जाता ना, तब कहते हैं उसको आप ठंड पड़ गई, जैसे वो कहने में भी कई बार आ जाता है। अगर आप शांत रहेंगे, हो सकता है वो उनको थोड़ा समय के लिए अच्छा नहीं लगे, जैसे आप गर्म तवे पर अगर ठंडा पानी डालते हैं वो और उछलता है और वो उछलेगा ही, लेकिन अगर आप डालते जाते हैं तो वो तवा ठंडा हो जाएगा। इट इज नॉट अबाउट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट, इट्स अबाउट वो रिश्ता बना रहे।
1: सही बात।
0: अभी आर्ग्यूमेंट आप जीत गए, ईगो आपके सैटिस्फाई हो गई, और रिश्ता खराब हो गया और रिश्ता टूट गया, तो फिर मतलब क्या उस चीज का।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर कविता जी हैं, लिखती हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए बाहर जाने की बजाय अपने पिता के छोटे से फुटवेयर के व्यवसाय में जुड़ना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता कि वो एक अच्छी और स्थिर नौकरी क्यों नहीं करना चाहता और उसके मन में क्या चल रहा है।
4: ये तो आपको उससे बैठ करके पूछना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, बट एट द सेम टाइम आई फील कि आप जो भी किसी चीज के बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो बताना चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे वो उस बच्चे की चॉइस होनी चाहिए। जरूरी ये होता है कि उसको पसंद क्या है। कई बार छोटे बड़े से ज्यादा भी, अगर कई बार कोई चीज बड़ी भी है पर उसको पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं है वो उसमें सफल होगा। और कभी कभी हो सकता है कोई चीज छोटी भी है पर वो उसके प्रति पैशनेट है, हो सकता है वो इधर कम भी कमाए वहाँ से ज्यादा, पर खुश रहेगा।
3: ये बात जरूरी की हो सकता है, आपने डिसीजन लिया, आप ज्यादा कामयाब नहीं हुए, ज्यादा आपने कमाया नहीं, लेकिन बाद में उसको दोष नहीं देना कि तुम इंजीनियरिंग कर सकते थे, उसकी खुशी देखना ज्यादा जरूरी है।
4: उस बच्चे की खुशी बहुत जरूरी है। हमारे लिए हमेशा जो खुशी का भी पैरामीटर होता है ना, एक्सटर्नल सक्सेस, कितना कमाया। दुनिया में भी यही पूछते हैं, पहले आप कितना कमाते हैं, आपकी वर्थ कितनी है, उससे जज करते हैं वो कितना सफल है। हो सकता है कभी कभी कोई थोड़ा कम भी कमाता है लेकिन वो कंटेंट है, वो खुश है, उसको 10 घंटे भी वो काम करने में अच्छा लगता है, उसकी जरूरतें कम है, तो हर्जा नहीं है, वो उसकी जीवन है, वो अपनी जीवन कैसे जीना चाहता है वो हर व्यक्ति को हक होना चाहिए। हमें अपनी ड्रीम्स या अपने एम्बिशंस हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, पर एज अ मदर अगर आपका कंसर्न है, अभी क्या कारण है उस बच्चे के मन में, क्या है फियर के कारण नहीं जा रहा है, या उसकी ये उसको पसंद है, अगर ये पसंद है, पैशनेट है, तो जाना देना चाहिए। अगर उसको फियर लगता है किसी कारण का, तो धीरे धीरे उसको एम्पावर करना चाहिए कि वो राइट चॉइस कर सके, पर उस बच्चे के मन में क्या है वो पेरेंट बेटर जान पाएंगे।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, Mirchi Mornings is officially on. Mera naam hai Priscilla, and if you're already on your second coffee, don't you worry. Main judge nahi kar rahi hu tumko. Third coffee piyoge, then we'll have to have the conversation. Abhi whether you're stuck in traffic, rushing to work, packing lunches, bachcho ko utha rahe ho, unko school pahunchane ki taiyari kar rahe ho, ya phir bas bed se khud hi negotiate karte ja rahe ho ki bas 5 minute aur yaar, I'm right here with you. Aur main agle kuch ghanton tak tumhare saath hi rehne wali hu. Aur aaj ka kaam kaaj kafi simple hai. Thodi si hum yahan wahan ki baatein karne wale, थोड़ा सा बॉलीवुड की बातें करने वाले, थोड़ा सा गॉसिप होने वाला है, देन वी विल हैव अ लॉट ऑफ अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और बीच बीच में थोड़ी सी बकबक भी करने वाले हैं, और साथ साथ में होने वाले हैं ढेर सारे मिर्चीदार बैंगर्स. बिकॉज ऑनेस्टली यार, लाइफ तो काफी स्ट्रेसफुल है, हमें स्ट्रेसफुल नहीं होना है. एंड हे, कीप योर फोन हैंडी, समथिंग वेरी शाइनी, वेरी देसी एंड वेरी वर्थ शोइंग ऑफ इज कमिंग योर वे ऑन मिर्ची. एक कॉन्टेस्ट की बात कर रही हूँ जिसके बारे में थोड़ी सी देर में बताऊंगी. अभी के लिए तुम ये नोट डाउन करो कि व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244, एंड कम से हाई टू मी ऑन इंस्टा एंड एक्स. मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. दोनों की जरूरत पड़ेगी कॉन्टेस्ट में, इसलिए पहले से बता दिया. अभी बताती हूँ कि आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Radio Mirchi, New York. It's hot. Mirchi, fresh mal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ਖਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਦਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का वेदर ना इतना परफेक्ट है कि तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने घर की याद आ जाएगी। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। गुड मॉर्निंग मेजान। अब पता करते हैं आज का वेदर का हालचाल क्या है। फिलहाल 55 डिग्रीज फारेनहाइट पर हम बैठे हुए हैं, मोस्टली क्लियर स्काइज है एंड विंड की वजह से फील हो रहा है 50 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। सो सुबह सुबह अगर घर से निकल रहे हो तो एक लाइट जैकेट अपने साथ कैरी करके जाना बनता है। एंड डोंट ओवरडू इट, शादी में नहीं जा रहे हो, सिर्फ बाहर जा रहे हो कुछ एरेंज रन करने के लिए या फिर अपने ऑफिस। मॉर्निंग स्टार्ट स्कूल एंड सनी अराउंड 54 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास, लेकिन टेम्परेचर जो है वो जल्दी जल्दी से ऊपर चढ़ने वाला है। बाई लंच टाइम विल बी एट अराउंड 73 डिग्रीज फारेनहाइट एंड द आफ्टरनून पीक्स एट अ वेरी प्लेजेंट 74 टू 76 डिग्रीज फारेनहाइट। और बेस्ट पार्ट ये है कि 0% चांस है रेन का। रिपीट आफ्टर मी, जीरो रेन। आज अम्ब्रेला को पूरी तरह से छुट्टी दी जा सकती है। विंड्स विल बी कमिंग इन फ्रॉम द वेस्ट एट अराउंड 7 to 14 माइल्स पर आवर, पिकिंग अप अ लिटिल इन द आफ्टरनून। ह्यूमिडिटी जो है वो ड्रॉप होगी ड्रामेटिकली फ्रॉम दैट 96% मॉर्निंग क्लिंगीनेस टू अ मच मोर कंफर्टेबल 32 to 37% लेटर। सन इज आउट विद मॉडरेट यूवी इंडेक्स ऑफ 4 अराउंड मिड डे। सो सनस्क्रीन स्पेशली इफ यू आर स्टेपिंग आउट SPF 50 प्लस प्लस प्लस वाला लगाना बनता है। सनसेट जो है आज वो होगा 6:28 PM के आसपास। टेम्परेचर स्लाइड टू अबाउट 70 डिग्रीज फारेनहाइट एंड ओवरनाइट वी आर हेडिंग इन टू द लोज ऑफ 50s। सो टुडेज फोरकास्ट इज सनी प्लेजेंट ड्राई। बेसिकली आज का वेदर जो है वो थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा है और करना बनता भी है। इट्स अ नाइस डे टू गो आउट एंड व्हाइल यू आर एंजॉयिंग योर आउटिंग्स कम हैंग आउट विद मी इंडोर्स, यानी कि इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हो तो मुझे 9033647244 पर, दैट्स माई नंबर। एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क. इट्स हॉट.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. I hope Priscilla is with us. And now it's time to get updated with what's happening around the world. Mirchi, our gun 3. सबसे पहले फ्रांस के सैन डेनी में स्कूल स्टूडेंट्स बेटर स्कूल कंडीशंस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे. मेयर बाली बागियाको सेड पुलिस मूव टुवर्ड द स्टूडेंट इवन दो अकॉर्डिंग टू हिम दे वरंट बिहेविंग अग्रेसिवली एंड ही पब्लिकली डिफेंडेड देम सेइंग दीस किड्स कुड बी हिज ओन चिल्ड्रन. नंबर टू पर फ्लाई दुबई फ्लाइट में इंडियन कैप्टन स्मिथ मचार पर को पायलट के अलेजेड अटैक के बाद अ साइबर क्राइम ग्रुप कॉल्ड एवरेस्ट इज क्लेमिंग इट हैक्ड फ्लाई दुबई. द ग्रुप सेज it accessed more than 4 gigabytes of data across thousands of files. The exact circumstances of the alleged breach are still unclear. So, internet par jo bhi claim aaye, usko forward karne se pehle fact check zarur kar le. And lastly, a sad news coming in from Bollywood. Veteran actor Nana Patekar has passed away at the age of 75 after a cardiac arrest in Goa. From Parinda to Krantiveer to welcome his voice, his intensity, his dialogues and screen presence were unmistakable. 3 National Film Awards, a career spanning decades, and definitely an actor who didn't need 47 takes to make you pay attention. Aaj Bollywood ne ek powerful performer lose kiya hai. May he rest in peace. And that's your Mirchi Hour ka 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Connect karo mujhse Instagram aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. WhatsApp par mera number hai 90336472444. Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर, आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर, ये दो है, एक लाल है, एक हरा, इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल है, एक हरा है, कौन सा काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट भारी सामान तो नहीं है सर?
1: रंग बता।
2: एक लाल, एक हरा।
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली। इमीडिएट तो कर दिया, लेकिन सिचुएशन है।
1: जी, मैं सोच रहा। आसपास कोई भी नहीं है।
2: आसपास है, लेकिन हिलने का टाइम नहीं है। हिल नहीं रहे।
1: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: हाँ, बिल्कुल।
1: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
2: ठीक है।
1: हरा काट के देख। धीरे से।
2: 1, 2, 3 Congratulations.
1: ताली बज रही है, कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है।
2: हाँ।
1: तो को पूछा फिर तूने?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning guys. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और एक बहुत ही बढ़िया खबर तुम्हें बताती हूँ. 9 चांसेस टू गेट लकी मिल रहे हैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिर्ची पर. नवरात्रि में गरबा तो सब करते हैं यार, लेकिन तुमको 9 नाइट्स में 9 गोल्डन चांसेस मिल रहे हैं गोल्ड चेन जीतने के. मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेंगी 9 गोल्डन चेन्स थ्रू आउट नवरात्रि. यस, यू हर्ड मी राइट, 1 प्रेशियस गोल्ड चेन एवरी डे. वीरानी ज्वेलर्स लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 चांसेस टू से वाओ कम टू मी माय प्रेशियस. करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, बस व्हाट्सएप करना है नवरात्रि टू 9033 मिर्ची. दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर 9033647244. या फिर तुम मुझे अभी के भी डीएम कर सकते हो इंस्टा पर. नवरात्रि लिखो, अपना पूरा नाम और अपना फोन नंबर लिखकर मुझे भेजो राइट अवे. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड देन वेट फॉर माय कॉल, क्योंकि उसके बाद हम एक कॉन्टेस्ट खेलने वाले हैं. और ओक ट्री रोड पर हो, आसपास हो, वीरानी ज्वेलर्स पे जाकर चेकआउट करो. उनके फेस्टिव ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर, और ये ऑफर्स ऑनलाइन भी तुम अवेल कर सकते हो veeraniejewelers.com पर. और अभी जय माता दी बोलकर फटाफट से पार्टिसिपेट करना शुरू करो कॉन्टेस्ट में. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, कमिंग अप सम मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, all my birthday babies. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings पर birthday announcement. India से आज के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को गौरी खान, Red Chillies की boss lady and also the boss lady of SRK. साथ साथ में मोना सिंह, our forever Jassie, the actors लक्ष्मी मांचु, राजेश शर्मा, समीक्षा सिंह, Indian YouTuber and influencer ध्रुव राठी and पाकिस्तानी एक्टर जावेद शेख, इन सबकी भी आज हैप्पी बर्थडेज है. साउथ सिनेमा में भी बर्थडे गैंग काफी सॉलिड है. कनाडा फिल्म मेकर योगराज भट्ट भी आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं. देन इंटरनेशनली वी गॉट मैट डेमन, सिगोर्नी वीवर, ब्रूनो मार्स, निक कैनन, बेला थोर्न एंड ऑथर आर एल स्टाइन. सो अगर आज यू आर ऑल्सो ब्लोइंग आउट कैंडल्स, लिसन, बर्थडे ट्विन लिस्ट तो प्रिटी इम्प्रेसिव है. आज तुम्हारा कॉन्डक्ट भी इम्प्रेसिव होना चाहिए. केक का फर्स्ट बाइट एकदम सुपर बड़ा और ऑसम होना चाहिए. सेकेंड बाइट भी तुम्हारा ही होना चाहिए. और कैलोरीज की चिंता तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो सब कल से हैंडल करना. अभी के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन. और मुझे बर्थडे शाउटआउट्स भेजना हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड बिकॉज बर्थडेज आरंट द ओनली रीजन टू गेट लकी दिस अक्टूबर, मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स को मिल सकती है गोल्डन चेन्स. यस, इस नवरात्रि पर वीरानी ज्वेलर्स लेकर आए मिर्ची 9 लक का हार, जहां 9 नाइट्स ऑफ नवरात्रि में 9 गोल्डन चांसेस तुम्हें मिल रहे हैं हर दिन प्रेशियस गोल्ड चेन्स जीतने का मौका, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची पर. इसके लिए करना तुम्हें सिर्फ इतना है, व्हाट्सएप खोलना है, नवरात्रि टाइप करना है और 9033 मिर्ची पर अभी के अभी भेज देना है रजिस्टर करने के लिए अपने पूरे नाम के साथ 9033647244 पर. दूसरा तरीका बताती हूँ, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. यहाँ पर नवरात्रि टाइप करके अपना पूरा नाम और फोन नंबर साथ में लिखकर भेजो टू पार्टिसिपेट एंड देन वेट फॉर माय कॉल. और अगर ओक ट्री रोड पर वीरानी ज्वेलर्स को विजिट करना है तो बहुत ही अच्छा मौका है, बिकॉज फेस्टिव ऑफर्स चल रहे हैं वहां पर. 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर ढेर सारे ऑफर्स हैं, फेस्टिव सीजन भी चल रहा है. वीरानीज्वेलर्स.com पर जाकर चेकआउट भी कर सकते हो. अभी फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स आने वाले हैं, उसके लिए बने रहो मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन आल्सो फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और आप पता करते हैं गोल्ड का क्या हाल चाल चल रहा है।
2: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,370. आज गोल्ड के प्राइजेस $4,370 पर ट्रायंस के साथ अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। गणेश चतुर्थी, पुष्य नक्षत्र, धनतेरस, दिवाली, डांडिया सब हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं और गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी अपवर्ड ट्रेंड ले रहे हैं। इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GIS सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आइए राज ज्वेल्स के साथ 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए

प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. कमिंग अप मिर्ची दैट बैंगर्स फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर
2: मिर्ची आवर का थ्री।
1: सबसे पहले इलॉन मस्क सेज स्टारलिंक इज बीइंग ब्लॉक्ड इन इंडिया बाय सर्टेन ओलिगार्क्स। इंडियाज कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री सेज द क्लेम इज बेसलेस एंड सेज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन अप्रूवल फ्रेमवर्क इज फेयर। नंबर टू पर ध्रुव राठी एंड एक्टर प्रकाश राज जॉइंड अ डेमोन्स्ट्रेशन इन बैंगलोर ओवर द SIR ऑफ इलेक्टोरल रूल्स इन इंडिया। ऑर्गेनाइजर्स हेल्ड अ पीपल्स ट्रिब्यूनल विद प्रोटेस्टर्स रेजिंग कंसर्न्स अबाउट अलेज्ड रॉन्गफुल डिलीशंस फ्रॉम वोटर्स लिस्ट फॉलोइंग अ सिंबॉलिक चप्पल प्रोटेस्ट। And lastly, Ranbir Kapoor ki much awaited Ramayana Part 1 is reportedly moving its India release date up to November 5th with paid previews on November 4th. So Diwali ke movie plans jo hai wo thode se adjust karne padenge apne calendar mein. And that's it for your Mirchi Aapak 3. Mera naam hai Priscilla. Sunte raho mujhe aur follow bhi kar lo Mirchi. Pris is my handle name on Instagram and X and WhatsApp ka number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na vid bala burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Lab se bol rahe hain aap? लैब?
1: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा कि टेस्ट कैसे करते हैं ये?
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते होगा आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारा,
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप। बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर जाकर कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ
2: ठीक है मैं निकलवा लूंगा, ठीक है। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, कहाँ पे भी जाना है,
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले देख ले देख ले,
2: ठीक है भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब देखते हैं किसका राशि फल क्या कहता है।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज थोड़ा सा अपने इमोशंस को साइड सीट दो और फैमिली का काम निपटाओ, लेकिन प्लीज अपनी मेंटल पीस को अनपेड इंटर्न मत बना के रखो यार। एक छोटा सा सेल्फ केयर स्टेप जरूर लेना आज के दिन। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 4। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज क्रिएटिविटी जो है फुल फॉर्म में है। पेंडिंग काम फाइनली बस हो गए जी बोल सकते हो। आज तुम्हारी बात में वेट रहेगा, तो टेल समवन यू केयर। थोड़ा सा प्यार वर्बली भी, थोड़ा सा व्हाट्सएप पर और थोड़ा सोशल मीडिया पर दिखाना बनता है। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, होम फैमिली और टू डू लिस्ट। आज यूनिवर्स जो है बेसिकली बोल रहा है पहले घर का पेंडिंग काम करो, उसके बाद आगे की चीजें करो। अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करो, एजुकेशन रिलेटेड प्लान्स जो है उन पे फोकस करो। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, आज मिनी एडवेंचर का मूड है। शॉर्ट ट्रिप, कुछ नया सीखना, मूवी, लाइब्रेरी, हॉबीज, बेसिकली ब्रेन को भी एंटरटेनमेंट चाहिए और वो उसे मिलना चाहिए आज। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, मून अलर्ट है, सो बिग शॉपिंग और मेजर डिसीजंस को थोड़ा सा होल्ड करो। होम इंप्रूवमेंट प्लान्स जो है उनको इंस्टाग्राम पिंट्रेस्ट के ड्रीम हाउस से थोड़ा सा रियलिस्टिक रखो। ओके, लकी कलर इज मस्टर्ड, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, गुड डे, बट इमोशंस थोड़े से एक्स्ट्रा लाउड हो सकते हैं आज। ग्राउंडेड रहो, प्रैक्टिकल चॉइसेस रखो और हर छोटी छोटी बात को टेड टॉक मत बनाओ, स्पेशली अपने दिमाग में। लकी कलर इज प्लम, लकी नंबर इज 8। एंड दैट वॉज योर राशि जोन पार्ट 1। बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे फॉलो भी कर लो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: वेट कर रहे थे राशि जोन का और मैं आ चुकी हूँ। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आज मॉडरेशन इज द मंत्रा। लो प्रोफाइल रखो, केयरलेस डिसीजन से बचो और हेल्थ को थोड़ा सा अटेंशन दो यार। बेसिकली अननेसेसरी ड्रामा को पोलाइटली सीन करके छोड़ दो। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 2। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सोशलाइज करो, श्मूज करो, लोगों से कनेक्ट करो, हेल्प चाहिए आस्क फॉर इट। आज ट्रस्ट बिल्ड करना तुम्हारी सुपर पावर हो सकती है। लकी कलर इज एमरल्ड, लकी नंबर इज 7। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, पेशेंस माय फ्रेंड, पेशेंस, फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिव देखो और ओवरनाइट लाइफ मेकओवर का प्लान थोड़ा सा पॉज करो। ओके, हर मंडे को न्यू मी बनना जरूरी नहीं होता है। लकी कलर इज लाइट ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, माइनर डिलेज पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं, बट स्लो एंड स्टडी विंस टुडे। टास्क्स पे आज कमिट करो और कॉन्ट्रैक्ट्स फाइन प्रिंट पढ़ो उनकी। मैंने टर्म्स नहीं पढ़े इज नॉट अ कैप्रिकॉर्न स्ट्रेटजी। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 10। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट हैं, अपॉर्चुनिटीज को यस बोलो लेकिन अग्रीमेंट्स को केयरफुली रीड करो। इकोनॉमी मूव करेगी बट सिग्नेचर करने से पहले स्पेक्टिकल्स जरूर मूव करो। ओके, लकी कलर इज सिल्वर, लकी नंबर इज 11। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसीज यानी कि मीन राशि, ट्रस्ट योर गट स्पेशली विथ योर कॉलिंग। फाइनेंशियल प्लान्स थोड़े से प्राइवेट रखो, न्यू इन्वेस्टमेंट्स और अननेसेसरी बोरोइंग में कॉशन रखो। हर टू गुड टू बी ट्रू ऑफर को फेरीटेल एंडिंग नहीं समझा करो बेटे। लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 12। एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रेकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू। मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: शो खत्म हो रहा है एंड आई एम लीविंग यू विथ समथिंग वेरी वेरी चमकता हुआ. दैट्स अ रैप ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विथ मी दिस मॉर्निंग. वेदर यू वर ड्राइविंग टू वर्क, प्रिटेंडिंग टू वर्क, या फिर ट्रैफिक में बैठकर सोच रहे थे यार मैं घर से आज निकली ही क्यों हूँ, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और ये याद रखो, यू कैन ऑलवेज फाइंड मी एट मिर्ची प्रिस MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. अब ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि यू कम एंड से हाई टू मी एंड सेंड मी योर रजिस्ट्रेशन राइट हियर राइट नाउ, क्योंकि नवरात्रि आ रहा है और इस बार लक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा शाइनी बनाने की जरूरत है. मिर्ची के साथ नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक तुम जीत सकते हो गोल्ड चेन. दैट्स राइट, मिर्ची 9 लक का हार आ चुका है प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें 9 नवरात्रि की रातों को 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज तुमको मिल रही है. हर दिन प्रेशियस गोल्ड चेन्स आर अप फॉर ग्रैब्स. पार्टिसिपेट करना बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है. पहला तरीका है कि अपना व्हाट्सएप खोलो और उस पे टाइप करो नवरात्रि और उसे भेज दो मेरे व्हाट्सएप के नंबर 9033647244 पर. दैट्स 9033 मिर्ची. या फिर सिंपली अपना इंस्टाग्राम खोलो, मेरा हैंडल ढूंढो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम MIRCHIPRIS. इस पर डायरेक्टली मुझे DM करो, नवरात्रि लिखो अपना पूरा नाम और फोन नंबर के साथ, मुझे अभी के भी भेज दो एंड देन गेट रेडी फॉर अ कॉल फ्रॉम मी. एंड इफ यू आर अराउंड ओक ट्री रोड, वीरानी ज्वेलर्स पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं उनके 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर. तो अगर ज्वेलरी खरीदने वहां पर जाना बनता है, ऑनलाइन विजिट करना है तो viranijewelers.com पर जाकर चेकआउट करो. एंड अभी सीरियसली आई एम आउट ऑफ हियर. प्रिसिला सिंह टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड. यू बीन अमेजिंग. कल सुबह मुलाकात होगी फिर से कॉफी के साथ मिर्ची मॉर्निंग्स पर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रूना लैला की आवाज़ है, गुलजार साहब के लिरिक्स हैं पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म घरौंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977 और ये साल एक सुपर डुपर हिट साल था अगर हम फिल्म की बात करें। ये वो साल था जब मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हो रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बिग बैनर्स की रिलीज हो रही थी, फिर चाहे अमर अकबर एंथनी हो, परवरिश हो, हम किसी से कम नहीं हो। और ऐसे में अ वेरी लो बजट फिल्म विद अमोल पालेकर एंड यू नो जरीना वहाब, ये फिल्म ने भी अपनी जगह बना ली। इसी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं। अब अगला कौन सा गाना है ये मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी, सुन करके वापस आओ। कहानी और किस्से उस जमाने के अभी तो शुरू है, आगे आगे सुनो होता है क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है एक हरा, इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन सा काटू सर?
3: टाइम कितना है
4: सर? डेढ़ से दो मिनट।
3: पीछे हो गया।
4: फिर कटेगा कैसे?
3: भारी सामान
4: तो नहीं है सर।
3: रंग बता।
4: एक लाल एक हरा।
3: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
4: एक सेकंड, कैंची ले ली सर। लेकिन सिचुएशन है।
3: आसपास कोई भी नहीं है।
4: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
3: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
4: हाँ बिल्कुल।
3: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
4: ठीक है।
3: बताइए, हरा काट के देख। धीरे से।
4: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशन।
3: ताली बज रही है? कौन है?
4: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
3: शोरूम का रिबन काट रहा है।
4: हाँ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

Zehreela Insaan movie se ye gana, which is picturized on Rishi Kapoor. It is sung by Kishore Da. Sunane wali kaun hai aapko purani jeans pe? Correct, aapki pyari Shreya. अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आरडी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है. वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें. ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोर दा की आवाज ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए. लेकिन भाई आरडी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था. सो किशोर दा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक ओ हंसिनी. पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, वो उस फिल्म का है जिसने रातों रात डेब्यू एक्टर्स को स्टार बना दिया था. एक थे कुमार गौरव और दूसरी थी विजेता पंडित. वेल, अगर आप रेट्रो फैन हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव स्टोरी. लेकिन इस फिल्म ने एक्चुअली में दो दोस्तों के बीच में हमेशा के लिए दरार डाल दी, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार. ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. सो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब ये फिल्म लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ही वांटेड कि मनोज कुमार शुड डायरेक्ट द फिल्म. मनोज कुमार ने मना कर दिया. मनोज कुमार ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर चुके थे और उसके तहत अपनी फिल्म क्रांति, पहली फिल्म क्रांति बना रहे थे. सो ही पोलाइटली रिफ्यूज. लेकिन ये बात राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. राजेंद्र कुमार थॉट कि उन्होंने मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म दिखलाई थी, दैट वाज हरियाली, तो शायद दोस्त जो है वो इस बार फेवर रिटर्न करेगा. बट दैट डिड नॉट हैपन. एनीवे, इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है. कमिंग अप, आशुताई का ये गाना फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, ओनली ऑन पुरानी जींस.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

है कि ये फिल्म देवानंद साहब ने जीना तवान के लिए बनाई थी। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड ये जो फिल्म थी ना हीरा पन्ना, इसमें देव साहब और जीना तवान थे। अब क्यों ये फिल्म उन्होंने उनके लिए बनाई थी, ऐसा व्हाई पीपल सेज, बिकॉज ये जो फिल्म थी उससे पहले आई थी हरे राम हरे कृष्णा, और उस फिल्म में देव साहब ने जीना तमन को लॉन्च किया था। जीना तमन उस फिल्म में देव साहब की सिस्टर बनी थी। ये फिल्म हिट होने के बाद ना इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे जीना तमन के, लेकिन सब बहन वाले। अब भाई जीना तमन तो ऑफकोर्स हीरोइन बनने आई थी, तो देव साहब ने उनको इन सारे ऑफर्स को ठुकराने के लिए मना किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम हीरोइन होगी, लीड हीरोइन की तरह काम करोगी। एंड देन दिस फिल्म के हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ऐसे किस्से कहानियां यहाँ चलती रहेंगी, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हीरो की हीरोइन भी बन चुकी हैं और हीरो की माँ भी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये जो गाना भी आपने सुना है फ्रॉम द फिल्म शक्ति। राखी जी को सबने बेहद मना किया था कि ये फिल्म बिल्कुल मत करो, लेकिन राखी जी मानी नहीं। वेल, शक्ति में थी स्मिता पाटिल, बच्चन साहब, दिलीप कुमार एंड राखी जी। राखी जी जो बच्चन साहब के ऑलरेडी लव इंटरेस्ट बन चुकी थी इन द फिल्म कभी कभी एंड क्वाइट फ्यू फिल्म्स, वो ये फिल्म में बच्चन साहब की माँ बनने वाली थी। लोगों ने मना किया कि भाई मत करो ये फिल्म, लेकिन राखी जी को पता क्या इंटरेस्ट किया? दिलीप साहब की वाइफ बनना इन दिस फिल्म। सो शी सेड कि मैंने दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया, इस बहाने मैं दिलीप साहब की बीवी का रोल तो कर लूंगी। तो उन्होंने ये फिल्म शक्ति करी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना लेकर के आई थी मैं। मेरा नाम है श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। तो बस गाने सुन करके वापस आओ, मैं यहीं वेट कर रही हूँ।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Milchi, burka.
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते होगा आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। भैया दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: नहीं ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: क्या हो गई तो भाई, अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा
1: कहीं और दे देता फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है
2: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले
2: भाई।
1: हाँ ठीक है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

नीतू जी अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही थी इस फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ ये जो गाना है फ्रॉम द फिल्म याराना, जिसमें नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली बार काम कर रही थी, तो शी वॉज इतना इन ओ ऑफ हिम कि उनके मुंह से ना डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो जब सेट पे उनको पहली बार जब डायलॉग बोलना था ना, वो था देखो किशन कोई आ गया। नीतू जी इतनी ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इम्प्रेस थी कि उन्होंने कप कपाते शब्दों में कहा, देखो देखो अमित कोई आ गया। अब भाई नाम उनका किशन था यानी बच्चन साहब का कैरेक्टर नेम, लेकिन अमित कहा उन्होंने। और काफी टाइम के बाद किशन किशन किशन किशन प्रैक्टिस करने के बाद ना, तब जा करके वो अमित को साइड रख पाई थी। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की बात है, मेरे यानी श्रेया के साथ होती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नीरज साहब ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा गाने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं उनमें से ये वाला अव्वल है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, रफी साहब का था ये गाना एंड लिखने वाले थे नीरज जी। कहते हैं पोएट नीरज कह लो आप, या फिर यू नो लिरिसिस्ट नीरज कह लो, कवि नीरज कह लो, भाई बातों के शब्दों के तो वो हमेशा धनी थे। एंड दे ऑलवेज से कि नीरज जी को ना अपने होम टाउन में एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो प्यार उनको कभी नसीब नहीं हुआ, और उस प्यार के लिए वो हर साल खत लिखा करते थे और उसे पोस्ट नहीं करते थे कभी। तो ये जो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे, ये एक्चुअली में उनका एक खत था। एंड इस खत को पढ़ लिया था रफी साहब ने और उन्होंने कहा अरे इसको गाने में बनाओ ना, मैं इसे गाऊंगा। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeetuRaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इसी फिल्म को देखने के बाद तो सलीम जावेद साहब ने जिंदगी बदल दी थी बच्चन साहब की। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहिए के साथ ये गाना फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा, एक ऐसी फिल्म जिसमें बच्चन साहब के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। द ओनली हीरोइन हु अग्रीड टू वर्क विद बच्चन साहब इन दिस फिल्म वॉज अरुणा ईरानी जी। इस फिल्म को देखने के बाद सलीम जावेद साहब ने जब लिखी थी जंजीर, उन्होंने कहा कि उनको उनका लंबा घोड़ा मिल गया है। प्यार से बच्चन साहब को लंबा घोड़ा कहते थे दोनों। वेल, जंजीर के लिए बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन द स्क्रिप्ट राइटर्स यानी द एंग्री यंग मेन सलीम एंड जावेद जी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई ये फिल्म करेगा, अगर उनका कोई विजय होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब होंगे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रणधीर कपूर जी ने प्रॉमिस किया था सुभाष घई से कि वो कान पकड़ के ऋषि कपूर को ले आएंगे ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना करेक्ट इज फ्रॉम द फिल्म कर्ज। अब ये फिल्म करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषि कपूर साहब। सुभाष घई ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, वो यू नो इनिशियल स्टेज पे थे, बट वो ये री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे फिल्म बनाना चाहते थे। इस सब्जेक्ट ने ऋषि कपूर को इतना इंटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन रणधीर कपूर को किया था। एंड सुभाष घई चाहते थे कि उनके पास अवेलेबल तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, काका, बट ही वांटेड अ यंगर हीरो टू प्ले द रोल ऑफ मोंटी, और इसलिए ऋषि कपूर को कान पकड़ के रणधीर कपूर ले आए, और फिर तो मूवी वॉज सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया श्रेया ने, कम राइट बैक।

0: Mirchi. Buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा, बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में। एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ, ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अरे तू है कौन, तू ये बता।
2: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15, वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

सलीम और जावेद की जोड़ी टूटने के बाद ये पहली फिल्म थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना इस फ्रॉम द फिल्म बेताब, यानी धर्म पाजी के बेटे सनी देओल की डेब्यू फिल्म। और धर्म पाजी वाज द वन जिन्होंने अपने दोस्त जावेद अख्तर को ब्रेक दिया जब इन दोनों की, सलीम और जावेद की जोड़ी टूट गई। सो दिस बिकेम द फर्स्ट फिल्म जो जावेद अख्तर साहब ने एज एन इंडिपेंडेंट राइटर लिखी थी। वेल, पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया और इसी फिल्म बेताब का गाना आपके लिए था। अब भाई जल्दी से वापस आओ क्योंकि अगली फिल्म के बारे में भी तो बताना है। सो कम राइट बैक।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ, और अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी फिल्म का है जो थ्रिलर फिल्म थी लेकिन इट वॉज नोन मोर फॉर इट्स म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म के लिए अपना फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट रफी साहब ने गाया ये गाना। बताओ बताओ कौन सी फिल्म का है? करेक्ट, मूवी का नाम कर्ज, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बैक्ट फिल्म फेयर अवार्ड। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आबू श्रेया के साथ अब चले हाईवे पे। ऑलराइट, तो जाने से पहले एक हाईवे हिट जो मैं डेडिकेट करके जाती हूँ, आज वाला ना किसी को डेडिकेट करने का मन नहीं है। ये एक ऐसा गाना है जो हम सबको पसंद है, और कभी कभी तो जब हम अकेले बैठते हैं ना तो इस गाने को सुन रहे होते हैं, स्पेशली इफ़ वी आर रेट्रो फैंस। मुकेश जी की आवाज़ है और गाना कौन सा है ये तो अभी आप सुन ही लोगे। तो ये सबका फेवरेट है, इसीलिए किसी खास बंदे के लिए नहीं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। फेसबुक और इंस्टा पे माई हैंडल इज आर जे श्रेया विद लव, दैट्स आर जे एस एच आर यू वाई ए श्रेया विद लव। तो इस आवाज़ के पीछे का चेहरा देखना हो तो वहाँ आ सकते हो, कुछ वार्तालाप करनी हो वार्तालाप तो वो भी कर सकते हो। गुड नाइट।

दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन

0: What do women really want?
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और ये सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, बट इसका आंसर हर औरत के लिए डिफरेंट होता है और शायद इसीलिए मिर्ची व्हाट वुमेन वांट का चार्म भी इतने सालों से बना हुआ है. बिकॉज यहाँ कॉन्वर्सेशन सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में नहीं होती, वुमेन के एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस के बारे में होती है. और अब करीना कपूर खान एंड मिर्ची इज बैक विद सीजन 6 ऑफ व्हाट वुमेन वांट, जहां इस बार गेस्ट लिस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है एंड इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज ऑनलाइन एज वेल. सबसे पहले तो आपको बता दूं मिर्ची और करीना के शो पे मीरा राजपूत इज गोना कम. हां जी, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत उनकी वाइफ और करीना कपूर हु यूज्ड टू बी शाहिद की गर्लफ्रेंड एट अ टाइम. आप सोच लीजिए कितना इंटरेस्टिंग होगा टू वॉच दिस एपिसोड. बट उनके अलावा कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, नीतू कपूर, नेहा कक्कड़, ताहिरा कश्यप और सुहानी शाह जैसे और भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज इस शो का हिस्सा बनने वाले हैं. लेकिन जिस एक कॉन्वर्सेशन ने सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब की है स्पेसिफिकली फॉर मी, वो है कृति सैनन का एपिसोड. बिकॉज यहाँ पे बात सिर्फ एक आउटफिट या एक एडवर्टीजमेंट की नहीं है, बात है उस जजमेंट की जो एक औरत को मिलती है, स्पेशली जब उसके क्लोथ्स, चॉइसेस या लाइफस्टाइल को पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लिया जाता है. सो इफ यू रिमेम्बर, रक्षाबंधन के टाइम पे कृति सैनन का एक एड काफी ज्यादा वायरल हो गया था एंड उनको काफी सारे बैकलैश मिले थे क्योंकि उन्होंने एक ब्रालेट पहन लिया था व्हाइल टाइंग रक्षाबंधन टू हर ब्रदर. और करीना के साथ इस एपिसोड में कृति ने जो एक लाइन बोली है ना, जो प्रोमो में कट के आया है, इज दैट माई चोली हैड बिकम अ 6 पीपल पैनल डिस्कशन ऑन प्राइम टाइम न्यूज. और भाई, इस रेज को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं दैट वी वुमेन एज वेल आर अ ह्यूमन जो जीना चाहती हैं विदाउट कॉन्स्टेंटली बीइंग जज्ड. बट यस, अपने एक्साइटमेंट को कंटेन करते हुए लेट्स वेट जब ये शो फाइनली एयर होगा. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. Na
1: virtua la burga. Energy, burga. Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है? एक लाल है, एक हरा है, कौन सा काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट। भारी सामान तो नहीं है सर।
1: रंग बता।
2: एक लाल, एक हरा।
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
2: कैंची ले ली सर।
1: लेकिन
2: सिचुएशन है।
1: आस
2: पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
1: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: हाँ बिल्कुल।
1: फटना नहीं चाहिए, आस पास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
2: ठीक है।
1: हरा काट के देख धीरे से।
2: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशन।
1: ताली बज रही है? कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है।
2: हाँ।
1: तो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: it's hot।
3: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
5: हिट गाना।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन व्हाई नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। Congratulations and celebrations to the much loved pair, Siddharth Malhotra और Kiara Advani की बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी second pregnancy announce की है by sharing the news on their social media with a heartwarming pic of baby booties. Last वो जब parents बने थे, it was 2024, अब दो साल बाद एक बार फिर से वो second baby के साथ bless होने वाले हैं, and I'm really really happy for this. The One का मोस्ट लव्ड सॉन्ग छठी मैया, अगर आपने मिस कर दिया तो ब्रो, विशाल मिश्रा की आवाज के बाद अब ये फीमेल वोकल्स में भी आ चुका है, जहां पलक मुच्छाल ने इस गाने में अपनी आवाज दी है. माइंड यू, द वन में सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया लीड रोल्स निभाते नजर आए थे, एंड भाई साहब, बींग अ बिहारी, छठी मैया से जो हमारा कनेक्शन होता है उसका तो कोई मोल भाव ही नहीं है. विपुल अमृतलाल शाह की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक एक्सटेंसिव लाइनअप करके रखा है फॉर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस फिल्म्स एंड ओटीटी. सो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, उन्होंने 5 प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए हैं, विच इंक्लूड्स 3 फीचर्स एंड 2 वेब सीरीज. फीचर फिल्म्स की बात करें तो उसमें से एक फिल्म कन्फर्म हो चुकी है विद द नेम समुक, और उसमें अक्षय कुमार लीड रोल निभाते नजर आएंगे. डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, और अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेनिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो अपने डेली ड्रिल की बात कर रही हूँ यार। फाइंडिंग मिर्ची फिल्म ची, हाँ जी, इट्स टाइम। आपको तो पता ही है, आपको इस वक्त मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होता है अपना फोन नंबर ताकि मैं आपको कॉल करूँ और ये गेम आपके साथ खेलूँ। तो आज मेरी बात किससे हो रही है?
3: रिंकू से।
0: रिंकू जी, कैसी हैं आप?
3: बढ़िया हूँ।
0: अरे क्या बात है, गेम खेलिएगा?
3: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल उसी के लिए।
0: ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शाहरुख खान का नाम ओके यानी ओम कपूर किस फिल्म में था?
3: ओम शांति ओम।
0: ग्रेट। ओम शांति ओम में शांति प्रिया को कौन मारता है?
3: अर्जुन रामपाल।
0: अर्जुन रामपाल ने लीड गिटारिस्ट का रोल किस फिल्म में किया है?
3: रॉक ऑन।
0: ओके, रॉक ऑन का कौन सा हीरो भाग मिल्खा भाग में भी है?
3: ये फरहान अख्तर।
0: फरहान अख्तर की फिल्म जिसमें ऋतिक रोशन है?
3: जिंदगी ना मिले दोबारा।
0: ग्रेट। ZNMD में लैला का रोल किसने किया है?
3: कटरीना कैफ।
0: कटरीना किस फिल्म में पॉलिटिशियन बनी है?
3: राजनीति।
0: राजनीति का कौन सा हीरो कटरीना का एक्स भी रह चुका है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर ने कौन सी बायोपिक की है?
3: संजू ही तो है।
0: हाँ, संजू में रणबीर कपूर का बेस्ट फ्रेंड कौन बनता है?
3: दोस्त बनता है वो गुज्जू, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot
1: and अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ. अज्जू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Yeah. Meaty Mitchie. Brighten up your day, we will find a way. On Meaty Mitchie.
2: Finding Mitchie for lunchy.
0: Shruti. Shruti.
3: Main to badi filmi hu.
2: So if you are new to the show, let me tell you, मैं रोज ये गेम खेलती हूँ जिसके थ्रू आई फाइंड अ मिर्ची फिलमची. बेसिकली देर आर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बॉलीवुड जिनका आंसर अगर आपने सही सही दिया तो ये टैग आपको मिल जाता है. सो आज ये गेम हमने शुरू किया था रिंकू जी के साथ, जो एक पॉइंट पे अट किया, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए अब हमारे साथ है मीनाक्षी जी. क्या आप रेडी है?
4: हाँ जी.
2: ओके, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि फिल्म संजू में रणबीर कपूर का बेस्ट फ्रेंड कौन बनते हैं?
4: विकी कौशल
2: किस फिल्म में पाकिस्तानी मेजर का रोल प्ले करते हैं?
4: राजी
2: में सहमत का रोल किसने प्ले किया है?
4: ये आलिया भट्ट.
2: आलिया भट्ट टीवी एंकर किस फिल्म में बनती हैं?
4: रॉकी और रानी
2: में जिम फ्रीक कौन है?
4: रणवीर सिंह
2: ब्रेड पकौड़े की कसम किस फिल्म में खाते हैं?
4: शादी मुबारक.
2: तो आप बोल सही रही हैं, उनका ये कंपनी का नाम होता है भले ही, लेकिन मूवी का नाम कुछ और है.
4: बैंड बाजा बारात.
2: ग्रेट. बैंड बाजा बारात में

0: Milchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virva la burga. Milchi, burga.
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप लैब?
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते होगा आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: नहीं ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप, बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: नहीं तो मेरा यूरिन
1: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेन करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेन कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर
2: ठीक है मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूं मेरा यूरिन कैसा।
1: हां ठीक है, देख ले
2: भाई।
1: हां ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: अपने बोल्ड टॉपिक्स की वजह से बैन हो गई थी ये फिल्में।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, टाइम एंड अगेन एक्सपेरिमेंट्स करते हुए कुछ ऐसे टॉपिक्स पे फिल्में बनाती हैं जो उस वक्त हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती और उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है या फिर बैन कर दिया जाता है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ उन्हीं मूवीज को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हमने बात की अनफ्रीडम के बारे में। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट परजानिया। ये फिल्म डायरेक्ट की 2005 में राहुल ढोलकिया ने, एंड इट इज अबाउट पारसी बॉय जो एकदम से गायब हो जाता है ड्यूरिंग 2002 का गुजरात रायट्स। और ये मूवी बैन की गई है गुजरात में, ऑफ कोर्स ड्यू टू इट्स पॉलिटिकल एंड कम्युनल थीम्स। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म वाटर, डायरेक्टेड बाय द वेरी टैलेंटेड दीपा मेहता, जो 2005 में आई थी। वेल, ये कहानी पोर्ट्रे करती है एक विधवा की जिंदगी इन 1930s इंडिया। और फिल्म इसलिए बैन हो गई क्योंकि इसको लेकर काफी सारे रिलीजियस प्रोटेस्ट्स हुए, बट लेटर ऑन द मूवी गॉट अ ग्लोबल रिलीज और साथ में ऑस्कर रिकॉग्निशन भी। वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कुछ ऐसे ही बैंड फिल्म में ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: वे अहेड ऑफ इट्स टाइम।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। सो बेसिकली ये वाला टैग जो है ना, ये कुछ फिल्मों को दे दिया जाता है जिनका थीम, जिनका टॉपिक जो है वो उस वक्त के समाज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो या फिर हजम ना हो पाए, और इन मूवीज को जनरली बैन भी कर दिया जाता है। सो पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू आज मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं नंबर चार पे। लेट्स टॉक अबाउट द मूवी सिंस। विनोद पांडे ने इस मूवी को 2005 में बनाया था, जिसमें केरला के एक प्रीस्ट के ऑब्सेसिव अफेयर की बात की गई थी। और इस मूवी को बैन इसलिए किया गया क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट कंटेंट था और ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड कर रहा था। एनीवे, मूविंग ऑन, नंबर पांच पे नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ माय सुपर डुपर फेवरेट्स, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, जो रिलीज हुई थी 2016 में, डायरेक्टेड बाय अलंकृता श्रीवास्तवा। और इनिशियली इस मूवी को बैन कर दिया गया था टैग देते हुए कि भाई ये काफी ज्यादा लेडी ओरिएंटेड है, हाँ ऊपर से सेक्सुअली बोल्ड भी है। बट फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ जद्दोजहद, फाइट्स एंड पब्लिक प्रेशर, इस मूवी को काफी सारे कट्स के साथ रिलीज किया गया। बट आप ये सारी फिल्में अब ओटीटी पे देख सकते हैं, तो वेट क्या कर रहे हो, अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करो ना, एंड सुनते जाओ मिर्ची। श्रुति आपके साथ है।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब
4: मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप टॉप टॉप टॉप ट्रेंडिंग। कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस टू द मच लव्ड पेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस की है बाय शेयरिंग द न्यूज ऑन देयर सोशल मीडिया विद अ हार्ट वार्मिंग पिक ऑफ बेबी बूटीज। लास्ट वो जब पेरेंट्स बने थे इट वॉज 2024, अब दो साल बाद एक बार फिर से वो सेकेंड बेबी के साथ ब्लेस होने वाले हैं एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दिस। द वन का मोस्ट लव्ड सॉन्ग छठी मैया अगर आपने मिस कर दिया तो ब्रो विशाल मिश्रा की आवाज के बाद अब ये फीमेल वोकल्स में भी आ चुका है जहां पलक मुच्छाल ने इस गाने में अपनी आवाज दी है। माइंड यू द वन में सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया लीड रोल्स निभाते नजर आए थे एंड भाई साहब बीइंग अ बिहारी छठी मैया से जो हमारा कनेक्शन होता है उसका तो कोई मोल भाव ही नहीं है। विपुल अमृतलाल शाह की बात करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने एक एक्सटेंसिव लाइनअप करके रखा है फॉर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस फिल्म्स एंड ओटीटी। सो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस उन्होंने 5 प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए हैं विच इंक्लूड्स 3 फीचर्स एंड 2 वेब सीरीज। फीचर फिल्म्स की बात करें तो उसमें से एक फिल्म कन्फर्म हो चुकी है विद द नेम समुक और उसमें अक्षय कुमार लीड रोल निभाते नजर आएंगे। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ और अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों, थ्रो बैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रो बैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी से एक रील मोमेंट मिलते हैं, कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए, ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iska bana, puska bana, saka bana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन सा काटू सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट। पीछे हो गया सर, पीछे हो गया। फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर।
1: रंग बता।
2: एक लाल एक हरा।
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
2: कैंची ले ली सर, कैंची ले ली। लेकिन सिचुएशन है।
1: आस
2: पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
1: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: बिल्कुल
1: फटना नहीं चाहिए। आस पास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
2: ठीक है।
1: हरा काट के देख।
2: धीरे से। 1, 2, 3 Congratulations.
1: ताली बज रही है? कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है।
2: हाँ।
1: तो इसी को पूछा फिर तूने?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

एक दो तीन, तो बस दिन गिन गिन के रह गए हैं नवरात्रि के। लेकिन दोस्तों, इस बार सिर्फ दिन मत गिनो, गोल्ड जीतने के चांसेस भी गिनो। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और नवरात्रि की एक्साइटमेंट ऑलरेडी हवाओं में है। क्योंकि यार, आउटफिट से लेकर प्लान से लेकर फेस्टिव शॉपिंग सब कुछ शुरू हो चुका है, और इसीलिए जब काउंटडाउन इतना स्पेशल है ना, तो सेलिब्रेशन भी ना थोड़ा और गोल्डन होना ही चाहिए। तो इसीलिए वीरानी ज्वेलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार, यानी नवरात्रि की 9 नाइट्स और 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, जहां लकी विनर्स के पास एक मौका है टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन। तो अब एक दो तीन करके दिन गिनने के साथ अपना नाम भी गेम में गिनवा लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। आपको व्हाट्सएप करना है हमारे मिर्ची के नंबर पर, 9033647244 टाइप करना है नवरात्रि, आपका नाम, आपका नंबर, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @RJMirchi सिद्धि, SIDDHI। बस आपको टाइप करना है नवरात्रि और आप हो जाओगे कॉन्टेस्ट में रजिस्टर्ड। और दोस्तों, फेस्टिव सीजन की चमक वीरानी ज्वेलर्स पर फुल ऑन धमाके के साथ चालू है, विद फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। तो यार, काउंटडाउन मेरे फेवरेट स्टाइल में, एक दो तीन नवरात्रि के दिन गिन और 9 रातें 9 गोल्डन चांसेस टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन्स। तो आज ही पार्टिसिपेट कीजिए मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। और जब ओपनिंग यार इतनी एक दो दिन से शुरू हुई है, तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग भी माधुरी स्टाइल बनता है, तो वॉल्यूम बढ़ाइए और सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

एक आवाज थी जो स्क्रीन पर आते ही वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ा देती थी, क्योंकि पता था कि जो डायलॉग अब आएगा ना वो सीधा याद रह जाएगा। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और जी हाँ, वो आवाज नाना पाटेकर जी की आवाज। क्योंकि नाम लेते ही ना इतने सारे नाना पाटेकर जी के अलग अलग कैरेक्टर्स एक साथ याद आते हैं। क्रांतिवीर का वो फायर, परिंदा की इंटेंसिटी, नट सम्राट की गहराई, और फिर वेलकम के उदय शेट्टी, कंट्रोल उदय कंट्रोल जो कहते थे। यार एक एक्टर जो आपको एक सीन में अनकंफर्टेबल भी कर सकते थे, इमोशनल भी कर सकते थे, और दूसरे में बिना कुछ एक्स्ट्रा किए हंसा भी सकते थे, यही थी नाना पाटेकर की पावर। और शायद इसीलिए जब आज उनके जाने की बात सुनते हैं तो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक अपनी जनरेशन के सिनेमा ही याद आ जाता है। वो डायलॉग्स जो हमने फ्रेंड्स के साथ रिपीट किए, वो सीन्स जो टीवी पर आए तो चैनल चेंज नहीं किए, और वो अनमिस्टेकेबल आवाज़। नाना पाटेकर स्क्रीन से चले तो गए हैं, लेकिन उनका कंट्रोल उदय कंट्रोल से लेकर उनके सबसे पावरफुल डायलॉग्स तक कितने बार वो हमारी कॉन्वर्जेशंस में वापस आते रहेंगे। और इसीलिए आज मिर्ची पर उन्हें याद करते हुए एक गाना उन सब कलाकारों के नाम जो चले तो जाते हैं लेकिन हमारी यादों के सीन्स में कभी एग्जिट नहीं लेते। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time।
3: न्यू जर्सी का अक्टूबर महीना कभी लगता है कि समर ने गुड बाय बोल दिया है, तो कभी लगता है कि समर बस कॉफी ब्रेक पर ही तो गया था। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज यहाँ पर मूड काफी प्लेजेंट है। टेम्परेचर नियरली 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच रहा है, तो अक्टूबर के नाम पे जो भी स्वेटर्स निकाल रहे हैं उनको एक छोटा सा सरप्राइज वेदर ने दे ही दिया। वैसे अक्टूबर की यही तो खास बात है, कैलेंडर कहता है फॉल, ट्रीज धीरे धीरे अपने रंग बदल रहे, लेकिन सनशाइन अभी भी समर वाली फीलिंग ही दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे वेदर में मुझे एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि हम इंडियंस के लिए ना अच्छा वेदर मतलब ऑटोमेटिकली एक सवाल आता है कि चलो कहीं घूमने चले, और फिर अगले आधे घंटे सिर्फ यही डिसाइड होता है कि जाना कहाँ है। तो आप भी बताइए कि आज शाम आपका मूड क्या है, लॉन्ग ड्राइव, आउटडोर डिनर या घर पे चिल। DM me on Instagram @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और जब वेदर इतना फिल्मी हो तो साउंड ट्रैक भी फिल्मी होना ही चाहिए, तो ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

अब ये ब्रेकिंग न्यूज देने वाले रिपोर्टर्स को अगर खुद ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा बनना पड़े तो शमशान द लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। OTT पर अक्टूबर 9th को आ रही है इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर रिपोर्टिंग लाइव, जिसमें नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। अब जरा इमेजिन करते हैं कि एक रिपोर्टर जो सिर्फ एक स्टोरी कवर करने निकली थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में खुद एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाती है। और साथ में है देवेन भुजानी, अदिल हुसैन और शेखर सुमन। वैसे मुझे तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जर्नलिज्म, दूसरी तरफ सस्पेंस, और बीच में वो सवाल कि सच तक पहुंचने के लिए ये कितना रिस्क ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्राइम थ्रिलर जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, या वो जहां एक ऑर्डिनरी पर्सन खुद डिटेक्टिव बन जाते हैं? DM मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा ब्रेक देते हैं, क्योंकि अगला गाना है एक ऐसी फिल्म से जहां एक फोन कॉल ने पूरी कहानी ही बदल दी थी। तो अभी आप भी जरा याद करना इस मूवी की स्टोरी क्या थी। फिलहाल बजाते हैं ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको? क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में। एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये? पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब। मैं हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन मैंने, क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हो तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आपको कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन, ये बता।
2: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आया ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15, वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि ऑप्शंस क्या है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और लाइफ के बड़े डिसीजंस में हम अक्सर सिर्फ दो चॉइसेस देखते हैं, यस या नो, अभी या बाद में, लेकिन बीच में भी कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और जब बात फाइनेंसेस और होम ओनरशिप की आए तो डिसीजंस लेने से पहले अपने ऑप्शंस को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाय करना हो, रीफाइनेंस करना हो या फिलहाल वेट करना हो, पहले समझिए कि आपके ऑप्शंस क्या है, और वही सिंप्लीफाई करेंगे मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बी।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

नवरात्रि की पिक्चर तो ऑलमोस्ट रेडी है, आउटफिट फाइनल, डांडिया रेडी, प्लेलिस्ट रेडी, लेकिन मिर्ची की पिक्चर में अभी गोल्डन ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और इस नवरात्रि फेस्टिव में वीरानी ज्वेलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि नवरात्रि सेलिब्रेट करते करते लकी विनर्स के पास चांस है टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन नवरात्रि के हर रात में। तो बस अब हीरो वाली एंट्री आपको खुद लेनी पड़ेगी। व्हाट्सएप कीजिए हमारे मिर्ची के नंबर पर 9033647244, टाइप कीजिए नवरात्रि और रजिस्टर कीजिए। आप रजिस्टर करने के लिए मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @rjmirchisiddhi SIDDHI। आपको बस टाइप करना है नवरात्रि और इस अनोखे कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करना है जहां आप जीत सकते हो प्रेशियस गोल्ड चेन। और पिक्चर में ज्वेलरी डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वीरानी ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी पर 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का फेस्टिव स्पेशल ऑफर जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फेस्टिव लुक के लिए जो ज्वेलरी दिल को पसंद है वो आप चूज कीजिए और जो गोल्ड चेन किस्मत में आए वो मिर्ची से जीतिए। मोर डिटेल्स @viranijewelers.com और जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची। टाइप कीजिए नवरात्रि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे इंस्टा के डीएम कर दीजिए। और अब पिक्चर रेडी हो तो बैकग्राउंड स्कोर भी तो चाहिए यार, तो डांडिया उठाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ और शाम शानदार में अगला बॉलीवुड बीट पकड़ो ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची इट्स हॉट
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारे टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्ची के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज only on मिर्ची इट्स हॉट।

बॉलीवुड का एक ऐसा काउच जहाँ बैठने के बाद सेलिब्रिटीज को अपने आंसर से ज्यादा अपने एक्सप्रेशन संभालने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं वो देखकर क्या हो जाए उनके साथ। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है कॉफी विद करण की, जिसका अगला सीजन 9 आने वाला है। और कहाँ जा रहा है कि ये तो फाइनल सीजन होने वाला है। वैसे मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि यार इतने सालों से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस काउच पर आ रहे हैं। नॉट जस्ट बॉलीवुड बल्कि और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट सेलिब्रिटीज, एंड ऐसे सारे एपिसोड्स तो धमाकेदार रहे ही है। तो कभी रैपिड फायर में कुछ फनी आंसर्स, तो कभी अनएक्सपेक्टेड कन्फेशंस, कभी फ्रेंडशिप की केमिस्ट्री, तो कभी एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो यार अगले दिन पूरे इंटरनेट की हेडलाइन ही बन जाता था। लेकिन मुझे इस शो की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये लगती है कि उसका जो रैपिड फायर राउंड होता था, ओ हो हो, कोई भी बड़ी सीरियल जो आती थी ना जिसमें एकदम कलेश होता था, उससे ज़्यादा कलेश उस रैपिड फायर राउंड में होता था। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब देने के लिए सेलिब्रिटीज़ को बहुत ही कम सेकंड्स मिलते थे, और कुछ बहुत ही खतरनाक जवाब बाहर आते थे। तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप भी करण जौहर के उसी काउच पे हो, और वो पूछते हैं वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी यू वुड लव टू हैव कॉफी विद, तो आपका जवाब क्या होगा मुझे ज़रूर बताना। डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और कॉफ़ी के साथ द बॉलीवुड गॉसिप तो हो गई, तो चलिए बॉलीवुड म्यूजिक की बारी। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक जमाना था जब कमिंग अप नेक्स्ट का मतलब सच में वेट करना होता था। शाम शाम लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका थ्रो बैक थर्सडे में। तो चलिए थ्रो बैक टू दोस टाइम जब यार संडे का इंतजार सिर्फ एक शो के लिए होता था। उसे सोचिए, आजकल तो एक क्लिक में पूरा सीजन मिल जाता है, लेकिन फ्राइडे रात का वो काउंटडाउन, क्योंकि यार फेवरेट मूवी टीवी पर आने वाली होती थी, उसका मजा ही अलग होता था। और अगर बीच में लाइट चली गई तो बस उस दिन का मूड ही ऑफ। और शायद इसीलिए उस वक्त एंटरटेनमेंट की वैल्यू भी अलग थी। हम देखते कम थे, इंतजार ज्यादा करते थे, और शायद इंतजार ही उस खुशी को इतना बड़ा बना देता था। तो आज घर जाते हुए एक काम जरूर कीजिए, किसी पुराने टीवी शो का टाइटल सॉन्ग याद करने की कोशिश कीजिए और देखना पूरा बचपन बैकग्राउंड में प्ले होने लगेगा। और हाँ, मुझे जरूर बताना वो कौन सा शो है जिसके लिए आप टाइम से पहले टीवी के सामने बैठ जाते थे। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए उस जमाने की यादों को सलाम करते हुए सुनते हैं ये एवरग्रीन बॉलीवुड गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Amici!
1: Buscabana, buscabana, sacabana, cabana! Burga, burga! La viva la burga! Amici, burga!
2: Hello?
3: Lab se bol rahe hain aap? लैब
2: हाँ जी बात कर रहा हूँ बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
3: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे,
3: तो वही मैं कह रहा हूँ उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
2: टाइम खराब कर रहे हैं,
3: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
2: पेशाब लूट रहे हो आप, बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: है तो मेरा यूरिन
2: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
2: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर
3: ठीक है मैं निकलवा लूंगा।
2: ठीक है
3: और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है जा।
3: मैं देखता हूं मेरा यूरिन कैसे।
2: हां ठीक है देख ले देख ले देख ले।
3: ठीक है भाई,
2: हां ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: फेस्टिव सीजन में दो चीजें कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, एक होता है गोल्ड और दूसरा होता है बॉलीवुड के गाने। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और थ्रो बैक थर्सडे यानी गोल्डन आवर में थोड़ा रिवाइंड करते हैं, क्योंकि पिछले साल इसी वीक पर गोल्ड ने पहली बार $4,000 का माइलस्टोन क्रॉस किया था और हम सोच रहे थे कि बाप रे गोल्ड कहाँ पहुंच गया। लेकिन दोस्तों इस साल गोल्ड ने ऑलमोस्ट $5,600 पर ट्रॉय आउंस का रिकॉर्ड हाई भी टच किया है और आज वापस अराउंड $4,130 पर ट्रॉय आउंस ट्रेड कर रहा है। मतलब पिछले फेस्टिव सीजन से इस फेस्टिव सीजन तक गोल्ड ने पूरी रोलर कोस्टर राइड करवा दी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गोल्ड के रेट्स चेंज चाहे कितने भी बदल जाए, फेस्टिवल्स में गोल्ड की जगह और उसके जुड़े ट्रेडिशंस वही रहते हैं, बिल्कुल हमारे बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की तरह। तो जमाना बदलता है, म्यूजिक का ट्रेंड भी बदलता है, लेकिन कुछ गाने हर जनरेशन को इस सेलिब्रेशन कराना सिखा ही देते हैं और इसी बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया को लाइव सेलिब्रेट करने आ रहे हैं राज जूल्स, जो हमारे लिए स्पेशल बॉलीवुड जैमिंग लेकर आ रहे हैं इस शनिवार को। तो बस दो ही दिन बचे, तो चलिए बुलाते हैं तन्वी। तन्वी जी, वेलकम टू शाम शानदार। और आज तो हमने ऑलरेडी गोल्ड के बारे में भी थ्रोबैक थर्सडे सेलिब्रेट किया है, गोल्ड के थ्रोबैक रेट बताया, तो आपको मुझे इस बॉलीवुड जैमिंग नाइट के बारे में तो बताना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ एक ऐसा गाना जो आपको पुरानी यादें आपकी वापस ताजा करता है आज थ्रोबैक थर्सडे पे, वो भी बता दीजिए।
1: थैंक यू सो मच सिद्धि और फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन योर शो। और मैं सबको इनवाइट करना चाहूंगी, पहले तो बस एक ही दिन बाकी है, यू नो अक्टूबर 10th को यू हैव टू बी देयर फॉर बॉलीवुड जैमिंग, टू जैम विद अस, टू सेलिब्रेट विद अस, सिंग विद अस। एंड ऑफ कोर्स जो आपने क्वेश्चन किया कि कौन सा गाना यू नो मुझे थ्रोबैक यू नो थर्सडे पे लेके जाता है, वो है लग जा गले। आई वुड से दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट, वेटिंग टू हियर दैट।
0: क्या बात है। तो दोस्तों देखिए, फेस्टिव सीजन में शॉपिंग तो होती है, लेकिन इस सैटरडे राज जूल्स पे ओक ट्री रोड पर शॉपिंग के साथ बॉलीवुड का तड़का भी लगने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली है इस खास शाम पे। अक्टूबर 10th सैटरडे शाम 3 बजे से लेकर 8 बजे तक 1376 ओक ट्री रोड जिलेन पे पहुंच जाइए, क्योंकि बॉलीवुड जैमिंग होगी, योगा सेशंस भी होंगे, भजन क्लबिंग भी होगा और थ्रो बैक टू वंडरफुल सॉन्ग्स, जैसे तन्वी ने बताया।
1: जी बोलिए। So you will get in a lot of gift cards and in a lot of sampling from our vendors. So बहुत मजे आने वाले हैं, तो आप सब जरूर आइएगा।
0: Absolutely, हम पहुंच जाएंगे बॉलीवुड जैमिंग में अक्टूबर 10th शनिवार राज जूल्स के पार्किंग लॉट पर शाम 3 बजे से लेकर 8 बजे तक। बहुत धमाका होने वाला है, बहुत सारे गिव अवेज होने वाले हैं। दोस्तों तारीख मत भूलिए, क्योंकि आपके वीकेंड के प्लान हमने ऑलरेडी बना लिए और आपके गाने के प्लान मैं हर शाम को यहाँ बना ही देती हूँ। तो आज तन्वी का फेवरेट गाना सुनते हैं, लग जा गले, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल।
2: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

नवरात्रि के लिए फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन सबको तो इनवाइट कर लिया, लेकिन उसी के साथ लेडी लक को भी इनविटेशन बनता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इस नवरात्रि मिर्ची और विरानी ज्वेलर्स आपकी लेडी लक को आजमाने के लिए दरवाजा खोल रहे हैं विद मिर्ची 9 लक का हार, यानी नवरात्रि के 9 नाइट्स, और आपको मिलेंगे 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जिसमें लकी विनर्स जीतेंगे प्रेशियस गोल्ड चेन्स। तो बस किस्मत आजमाने का मौका आपके सामने, और आपको करना है रजिस्टर हमारे मिर्ची के नंबर पर 9033647244 9033647244। टाइप करना है नवरात्रि और आप हो जाओगे रजिस्टर, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। टाइप कीजिए नवरात्रि, आपका नाम, आपका नंबर, और पाइए मौका टू विन गोल्ड चेन। और फेस्टिव सीजन की गोल्डन शॉपिंग के लिए विरानी ज्वेलर्स ओक ट्री रोड इजलिन पर 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशल ऑफर्स भी है, तो जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए, इनविटेशन तो सबको भेज दिया, तो अब एक नवरात्रि अपनी लेडी लक को भी आजमाइए। आज ही रजिस्टर कीजिए मिर्ची 9 लक का हार, ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आग खराब तो झरना कहीं तेरे दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ काफी हो गई बक बक बाकी बातें पीने बाद

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक। सो फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मज़े की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सुजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप भी बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं। टेल मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, एक ऐसा गाना, एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना, मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शर्मली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी, और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाली किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था, और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपर हिट एल्बम का सुपर हिट गाना बलम पिचकारी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burca, burca. La fiat va la burca. Milci, burca.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल है, एक हरा है, कौन सा काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? 1.5 से 2 मिनट.
1: कैंची ले ली सर.
2: इमीडिएट तो कर दिया लेकिन सिचुएशन है.
1: आसपास कोई भी नहीं है.
2: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
1: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
1: फटना नहीं चाहिए. आसपास के लोगों को भी सिक्योर कर दे.
2: ठीक है.
1: हरा काट के देख. धीरे से.
2: 1, 2, 3. Congratulations.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना. मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है.
2: हाँ.
1: तो मैं इसी को पूछा है फिर तूने?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, रेखा भारद्वाज की आवाज में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज़ ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मज़े की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में, घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी, तब तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विथ अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उस उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा। लेकिन आप भी मुझे बताना विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2013 के एल्बम के उस गाने की जिसके वजह से ना, मतलब सूटकेस पैक्ड हो या ना हो, दिल ऑटोमेटिकली इलाही मोड़ पे चला जाता है। जी हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना इलाही, संग बाय अरिजीत सिंह। वैसे यार मजे की बात तो ये कि अरिजीत सिंह की ब्रीजी ओपन थ्रोटेड डिलीवरी और प्रीतम का लाइट गिटार लेड अरेंजमेंट मिलकर एक ऐसा वाइब क्रिएट करता था जैसे कि यार जिंदगी ना हाँ बोल रही हो। मतलब लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य के एकदम सिंपल से, ऑनेस्ट से और सीधे दिल तक पहुंचने वाले। वैसे तो ये जो गाना है इलाही, इसका रिप्रीज वर्जन मोहित चौहान ने गाया था क्योंकि यार सेम जर्नी थी लेकिन अलग का टेक्सचर था। तो दोनों वर्जन अगर सुनो ना तो लगता है कि यार एक ही सफर को दो नजरियों से देखा गया है। फिल्म में वैसे रणबीर कपूर के ट्रैवल मॉन्टाजेस ने भी इस ट्रैक को प्योर बैकपैक एंथम बना दिया था। मतलब जब भी ट्रैवल का मन करे ना, ये गाना दिमाग में डेफिनेटली आता है। तो चाहे हेडफोन्स पे सुन लो या फिर अपने गाड़ी में, यार ये गाना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर ही देता है। तो चलिए सुनते हैं इस हिट एल्बम का ये अमेजिंग सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है। वो बजाते हैं यहाँ पर, फिलहाल सुनते हैं इलाही फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: वैसे

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉड्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान से की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। चलिए अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा बाय बाय सायोनारा टू यू। लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मेरे साथ जिंदगी में मिस एडवेंचर्स होते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे उससे प्रॉब्लम है कि ये मिस एडवेंचर्स एक ऐसे इंसान के सामने नहीं होने चाहिए दैट आई एम टोटली क्रशिंग ऑन डूड. लाइक रिसेंटली अभी 2-3 हफ्ते पहले फाइनली हमारी बिल्डिंग में एक बहुत ही लाइक क्यूट सी काइंड ऑफ गाय आया एंड ही वाज अ टोटल सेपियोसेक्सुअल्स ड्रीम. चश्मा वश्मा फ्रेंच बियर्ड एंड एवरीथिंग, जस्ट द काइंड ऑफ गाय दैट रॉक्स माय बोट. अब इस बंदे के सामने मैं भी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी. हम दोनों फॉर्चुनेटली उस मोमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर थे एंड बोथ ऑफ अस हैड टू गेट इनटू द सेम लिफ्ट.

मैं हीरोइन बन रही थी, मैंने अपने डार्क ग्लासेस अपने चेहरे से उतारे ही नहीं, और जब मैं स्वॉव बन के लिफ्ट में घुस रही थी, आई डिडंट रियलाइज दैट आई टुक सो लॉन्ग गेटिंग इनटू द लिफ्ट इन स्लो मोशन कि वो लिफ्ट मेरे मुंह पर बंद हो गई. एंड दैट गाय जस्ट लुक्ड एट मी, मेड आई कॉन्टैक्ट ब्रो, एंड ही स्माइल्ड, और उसने उस लिफ्ट को मेरे मुंह पर बंद होने दिया. एंड आई वॉज लाइक, यार दिस इज सो टेरेबल, इजीली सिंगल हूं मैं. और अगर आपने भी मेरी जिंदगी में ऐसे कार्यक्रमों के अलावा कोई और क्रम नहीं किया है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम, on Facebook, and most likely on a singles club as well. On that note, while you send me your number, kahin mat jana jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Energy. Busca bana, busca bana, saca bana. Ya bana. Burka, burka. La vida la burka. Energy burka.
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप लैब?
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर?
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।